89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Milci, burga. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चक्कर 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर,
2: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बनकर कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड कर.
3: बकवास बनकर
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: शराब अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका. कोई पेशेंस चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंस चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Tesher aur Justin Derulo ki awaaz mein ye gana right here on Mirchi Mornings. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को on 89.6 Mirchi 1 और बात करते हैं जरा वेदर शेदर की, जरा देखते हैं क्या कहता है आज का तापमान.
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: वेदर अपडेट.
1: वेल, वेदर ये कह रहा है, देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आज का हमारा 44 डिग्री सेल्सियस पर जा रहा है. मिनिमम वेयर एज इट इज़ एट 33 डिग्री सेल्सियस. एक्चुअल फील्स जो है 36 डिग्री फिलहाल जो आप महसूस कर रहे हो. और अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो इनफैक्ट कल से भी कम है. ये तो अच्छी बात हुई ना, 17% पर ह्यूमिडिटी है, विच इज़ लाइक ठीक है, इतना तो नॉर्मल है, चलता है फिलहाल के लिए. तो यार ज़बरदस्त तरीके से हमारी दिन की शुरुआत हो चुकी है. और अगला गाना शाश्वत सचदेव की म्यूज़िक, मधुबंती बागची और जैस्मिन संडलास, एंड यू नो विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. धरंधर का ये गाना शरारत भरा मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

वेद शर्मा की आवाज और साथ जुड़ गई है आपके साथ मेरी आवाज। और अजी मेरी आवाज के साथ में यहाँ पर और बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं। गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कर लेते हैं चले सभी को। फिलहाल तो वो लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ, वेरी गुड मॉर्निंग दोहा। और जो लोगों ने हमें मैसेज किया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैसेज आया है, ये इनका नाम क्या है भाई, नाम अपना लिखा करो, इमरान का मैसेज आया है। राइज एंड शाइन अर्ली बर्ड अजी आफरीन, वेरी गुड मॉर्निंग। उसके अलावा यहाँ पर अब्दुल वाजिद राजपूत फ्रॉम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग आफरीन जी, कैसी है आप, बिल्कुल खैरियत। अलादीन खान यहाँ पर मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, अरे आफरीन कहिए मुझे, गुड मॉर्निंग कतर। हरपाल संधु फ्रॉम दुखान, इनका भी मैसेज यहाँ पर आता है। सो वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को भी। अगर आप अपना कोई स्पेशल दिन आज सेलिब्रेट कर रहे हो, यानी आपका कोई बर्थडे शर्दे है, एनिवर्सरी है, भले ही शायद वर्क एनिवर्सरी क्यों ना हो, डू लेट अस नो, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर। 5000 1896 इज आवर नंबर यर। मीन वाइल यहाँ पर इमरान ने रिक्वेस्ट किया था मर्डर 2 का गाना, तो यर विच इज हर्षित सक्सेना की आवाज में। कमिंग अप नेक्स्ट हाले दिल, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा।

0: रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
1: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स पर सिंपली आफरीन को. कभी कभार क्या है ना, हम हमारे कतर को बड़ा ही छोटा समझते हैं. मतलब यार छोटा तो है साइज में, लेकिन भाई इतनी सारी चीजों से नवाजा है ये जगह को. जैसे अगर बात करें मरीन लाइफ के बारे में, ठीक है, और एक स्पेशली उसमें मैं वेल शार्क्स के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि दिस इज द सीजन ऑफ द साइटिंग ऑफ वेल शार्क्स एंड ऑल्सो फॉर दैट मैटर डॉल्फिन्स. इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने ट्यूजडे को ही, यानी कल ही, साइट किया है ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स एंड वेल शार्क्स इन द नॉर्दर्न वाटर्स ऑफ कतर. मतलब आप सोचिए भाई, हम कितने सारे पैसे देकर ये सारी चीजें देखने जाते हैं. अगर जहां तक मैं जानती हूँ, वेल शार्क्स की साइटिंग जो है आइसलैंड में होती है, नॉर्वे में होती है, एंड दैट रियली कॉस्ट्स अ लॉट, राइट? मतलब बीइंग इन कतर, हम कितने साल से है, फर्स्टली यू टेल मी कि आप लोग कितने साल से यहाँ पर हो, एंड यू डिड नॉट नो दिस फैक्ट कि भाई हमारे कतर में वेल शार्क्स दिखते हैं. अरे हाँ यार, मतलब मैं 12 साल से हूँ और मुझे ये बात तकरीबन 2-3 साल पहले ही पता चली है, एंड दिस इज ऑन माई लिस्ट कि भाई मेरे ख्याल में डिस्कवर कतर से ये टूर्स जाते हैं जहाँ पर आप जाकर ये वेल शार्क्स की साइटिंग कर सकते हो, डॉल्फिन्स की साइटिंग कर सकते हो. एंड सीरियसली, मतलब ये खुले समंदर में डॉल्फिन्स को और वेल शार्क्स में उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना, अपने आँख में कुदरत के एक खूबसूरत नज़ारा ही तो कहेंगे ना हम इसे. एंड यही मैं कहती हूँ कि जहाँ पर आप हो उसे ना पूरी तरह से एक्सप्लोर करो, उसके बाद में फिर दुनिया देखेंगे, घूमेंगे, क्या कहती है पब्लिक. फिलहाल के लिए तो मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Helpline?
1: Mirchi Helpline, what is the question?
0: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ. कॉलेज में कैसे जाऊँ?
1: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना.
2: साले का खोपड़ी तोड़ साले का.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए वो वक्त आ गया है जब आपको अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनफैक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी कहता है दैट अब जब हीट इतनी बढ़ गई है, हीट स्ट्रेस हो गया है, तो किस तरह से आप जब काम पर हो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो वेल दिस अप्लाइज मेजरली टू दोस जो बाहर आउटडोर में रहते हैं, तो उनके लिए है कि भाई ऑफकोर्स आपको पानी पीना चाहिए हर 15 मिनट में। ये हमेशा कोशिश करें कि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। ऐसे वक्त पर जब आप दिन के वक्त पर हो, बाहर हो, तो कोशिश करें आप चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब ना पिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड शेड्यूल फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क्स। और हाँ, सही खाइए, लाइट खाइए, ऑल्सो वेयर लाइट लूज क्लोदिंग एंड कीप योर हेड कवर्ड व्हेन आउटडोर्स। वेल ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस है ये मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जारी की है। तो बस जैसे गर्मी आई है, जो बाहर काम कर रहे हैं, जो अंदर है, सभी के लिए भाई अपना ख्याल रखिएगा। एंड यस, ऐसा वक्त में ना मैं जरूर कहती हूँ कि भाई सनस्क्रीन को अपना बेस्ट फ्रेंड जरूर बनाइएगा। इट्स एक्चुअली अंडररेटेड, थोड़ा सा उसे ओवर कर दीजिए। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक राइट ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieva la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी।
3: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
2: या
3: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
2: बोलिए।
3: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
2: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
3: अब आपको ये, मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
2: Oh my God.
3: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
2: नहीं मैम, प्रॉब्लम
3: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
2: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजू?
3: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
2: सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
3: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
2: Hello.
3: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछी पुछी कुछी पुछी. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
2: गोलगप्पे नहीं होते,
3: चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
2: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
3: लंबे वाले
2: नहीं है वो.
3: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं.
2: क्या खाते हैं
3: मैम? मुर्गा.
2: मैम वो भी नहीं है.
3: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
2: मैम ये हमें नहीं
3: पता. हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
2: हाँ जी मैम बताइए.
4: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
2: आपकी आवाज में काफी
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: अच्छा एक बात बताएं, आप कतर में कितने साल से हो? 5 साल, 10 साल, 20 साल या ज्यादा? लेकिन एक सवाल है आपसे कि कभी सोचा है कि रेंट देने के बजाय यहाँ अपने नाम की प्रॉपर्टी लेने के बारे में? क्योंकि अगली खबर उन लोगों के लिए है जो कतर को सिर्फ अपना वर्क प्लेस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बेस भी समझते हैं।
1: क्या खबर कतर?
0: देखिए, कतर ने फॉरेन रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए एक और बड़ा दरवाजा खोल दिया है। अब समय समय रिसोर्ट और बीच प्रोजेक्ट को भी उन डेजिग्नेटेड एरियाज के लिस्ट में ऐड कर दिया गया है जहां नॉन कतरीज प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। ये डिसीजन कैबिनेट रेजोल्यूशन नंबर 21 ऑफ 2026 के तहत आया है और ऑफिशियल गजट में पब्लिश होते ही इफेक्टिव हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक बीच प्रोजेक्ट नहीं है, समय समय कतर का सबसे एम्बिशियस टूरिज्म और लाइफस्टाइल डेवलपमेंट्स में से एक माना जाता है। फ्यूचर में यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट्स, मरीना, एंटरटेनमेंट जोन, ये सारा कुछ यहाँ पर होने वाला है। गोल्फ फैसिलिटीज और वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शंस डेवलप होने वाले हैं। मतलब आज का इन्वेस्टमेंट कल के वाटर फ्रंट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि और कौन से एरियाज हैं जहां पर फॉरेनर्स प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं कतर में, तो लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है द पर्ल, एज यू ऑल नो, लुसेल, वेस्ट बे, अल खोर, उनाइजा, अल खरीज, ये सारे हैं और इसमें अब समय समय रिसोर्ट और बीच प्रोजेक्ट भी इंक्लूड किया गया है। सो वेल, कतर अब सिर्फ अर्निंग डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि ओनिंग डेस्टिनेशन भी बनते जा रहा है। माइक सदुल तक आप फ्री हैं आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
2: उससे भी ज्यादा.
1: लॉटरी लग गई?
2: उससे भी बड़ा.
1: तो फिर बताओ.
2: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है. ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम.
0: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच. पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ.
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: आएंगे दीदी. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: सोनू निगम और कृष्ण के लिए साहा की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग दोहा, मैं हूँ आफरीन। एंड यस, वक्त हो चला है कि सारे बॉलीवुड के फैंस यहाँ पर एक साथ असेंबल हो जाए। और ये जो रोज आप मेरे को चैलेंज जो दे रहे हो ना, मैं इस चैलेंज को अब सीरियसली लेने लगी हूँ। अच्छा, उन लोगों को बता दूँ जो अभी अभी जुड़े हैं कि भाई रोज कोई ना कोई होता है कि बोलते कि थोड़ा डिफिकल्ट दो आफरीन सवाल, कुछ ऐसा दो कुछ वैसा दो। अजीत तुम भी बता दो क्या सवाल पूछना है मुझे और मैं वही पूछ लूंगी, ये भी सही रहेगा ना। हाँ एक्चुअली मतलब कोई ना कोई ऐसा कुछ बता सकता है तो नेक्स्ट डे मैं वही वाला ऐसा कुछ सवाल पूछ लूंगी, ये भी सही रहेगा। 5000196 व्हाट्सएप नंबर है। वैसे मेरा गपशप तो हमारी यहाँ पर होती ही रहती है। सो वेल, लेकर आई हूँ मैं लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट में एक ऐसा सीन। अच्छा, सीन सुनने से पहले ही मैं एक हिंट आपको ये देती हूँ कि जो सीन का बैकग्राउंड स्कोर है ना, अगर डायलॉग नहीं समझ में आ रहा है ना तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो तो शायद आपको मूवी याद आए। ठीक है, इतना अच्छा हिंट दे दिया मैंने, तो रेडियो सच की वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से सुनो।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: मेरे shaadi.com में मुझे दो लड़के और अच्छी नजर आए हैं, एक तो सानिया के लिए और एक तुम्हारे लिए।
3: मेरे लिए? Don't play this game with me.
2: क्यों?
3: मुझे शादी नहीं करनी है।
2: कब तक?
3: जब तक कॉलेज खत्म नहीं होता।
2: और तब?
3: जो पापा कहेंगे वो कर लूंगी।
0: ऑल राइट, एंड आई एम सो श्योर नाउ अब आप कंफ्यूज होने वाले हो दो तीन मूवीज में। 5000196 इज माई नंबर एंड आई नो कि आपने एक्टर और एक्ट्रेस पहचान लिए कि ये कौन है, नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दैट। लेकिन मूवी कौन सी है दोस्त, ये तो बताओ। 5000196 और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पहले तो मैसेज आया है अरबाज खान का विद द राइट आंसर, एंड देन आई हैव रुबेल मैसेजिंग हियर। गुड मॉर्निंग रुबेल, और यस आंसर्स आ रहे हैं, मजा आ रहा है। चलिए अगला गाना, इस तरह की मटर घिसती ना तो हमारे शो पर तो चलती रहती है, और मोहित चौहान भी यही कहना चाह रहे हैं। Enjoy this track. Mike Sidil Takafreen ke saath, it's hot.

0: Mirchi. Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
1: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
2: ऑफ कोर्स, कस्तू मजा, परिणीता से, और शिलीगुड़ में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
1: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन जुड़ गई है आपके साथ एक मजेदार सा सवाल लेकर। और मुझे क्या ना, मुझे आपको कंफ्यूज करने में बड़ा मजा आता है। मतलब यार यहाँ मुझे पता था कि आप 2-3 मूवीज के नाम बताओगे मुझे। वेल अरे भाई उन लोगों को तो बता दो भाई किस बारे में बात कर रही हो जिसका मैंने डायलॉग सुनाया था और मैंने कहा था कि भाई अच्छा ये मूवी पहचानो। अब जो एक्टर एक्ट्रेस थे इन्होंने वो टाइम पर बहुत सारे मूवीज में एक साथ काम किया है, लेकिन ये पर्टिकुलर मूवी कौन सी है ये तो आप बताओगे ना। तो चलिए पहले डायलॉग सुन लेते हैं। Here it goes.
0: Lights, camera, scene test.
2: मेरे शादी.com में मुझे दो लड़के और अच्छी नजर आए हैं, एक तो सानिया के लिए और एक तुम्हारे लिए।
3: मेरे लिए? Don't play this game with me.
2: क्यों?
3: मुझे शादी नहीं करनी है।
2: कब तक?
3: जब तक कॉलेज खत्म नहीं होता।
2: और तब?
1: All right. तो बस ये तो एक्टर एक्ट्रेस कौन है ये तो मैं बता दूंगी भाई, देयर इज नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दैट। मतलब ये ऋतिक रोशन और करीना कपूर की आवाज़ है और उस टाइम के अराउंड 2000 इन दोनों की बहुत सारी पिक्चर्स आई थी एंड दैट इज़ वाई आई फील कि आप लोग थोड़े से कन्फ्यूज हो जाओगे। वेल इनके बहुत सारे पिक्चर्स में से मुझसे दोस्ती करोगी और फिर वो कौन सी थी वो मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मतलब ये सारे मैसेजेस मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। यस देखो मैं प्रेम की दीवानी हूँ मुझसे दोस्ती करोगी, लेकिन नो नो नो नो नो नो नो यहाँ पे जिन्होंने पीयूष ने अरबाज ने अख्तर ने एंड देन आई हैव हू हियर रमदिनीश ने। सो वेल आज मैं वॉइस मैसेज प्ले नहीं कर पा रही हूँ फॉर सम रीज़न नहीं प्ले हो रहा है, बट यस जिन्होंने यादें कहा है दैट इज़ द राइट आंसर। भाई यादें में भी तो थे, लेकिन ऐसी बहुत सारी मूवीज इनकी जब आई ना एंड तकरीबन करीना कपूर और ऋतिक रोशन की केतरी जी छोड़कर बाकी सारी मूवीज फेल हो गई थी। उसके बाद में ऋतिक ने कहा कि नहीं बॉस नहीं, अब मैं करीना के साथ में पेयरिंग करूंगा नहीं, क्योंकि कभी भी मेरी मूवी उसके साथ में हिट होती नहीं है। सो वेल विद दिस याद है कि गाने बहुत अच्छे हैं एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग आई एम श्योर आप बहुत सालों बाद सुन रहे हो यार, वही सुना देती हूँ मैं भाई। म्यूजिक बड़ी अच्छी है और इस गाने में मुझे सुखी पाजी की आवाज सबसे अच्छी लगती है अमंगस्ट आशा भोसले उदित नारायण।
4: इस इश्क में ऐसी आग लगे हो।
1: Enjoy this track, माइक से दिल तक आफरीन के साथ अनमिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
3: Mirchi One. It's hot.
1: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
3: Mirchi Fresh Maal.
4: मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शबीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मैं क्या करूं, जब भी मैं गाना सुनती हूँ ये, मैं पहले वाला वेलकम को ही याद करती हूँ ना। मतलब हाउ कैन आई रिलेट टू द न्यू वेलकम विद द सॉन्ग। मतलब नया है तो कुछ नया गाना होना चाहिए कि नहीं। वेल मिर्ची पर आप सुन रहे हो आफरीन को, और मिर्ची घड़ी का इशारा तो 8:04 की तरफ कर रहा है और मेरा इशारा सारी नई मूवीज की तरफ कर रहा है।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: वेरी गुड मॉर्निंग कतर, आफरीन है आपके साथ और नए मूवीज की बात हो रही है। वेलकम टू द जंगल लुक्स लाइक एन एब्सोल्यूट केओस यार। आई जस्ट कांट इमेजिन, मतलब बॉलीवुड में इतने सारे स्टार कास्ट के साथ में, मतलब कैमियोज देखे हैं मैंने, बट इतना बड़ा स्टार कास्ट, आई रियली डोंट नो हाउ इज दिस मूवी गोइंग टू टर्न इनटू। लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, होपफुली बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आगे की रिलीजेस की बात करें तो बहुत सारी मूवीज लाइंड अप है। वैसे तो 1 जून में अपार्ट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल वी ऑल्सो हैव कॉकटेल 2 कमिंग अप विच इज शाहिद कपूर एंड देन वी हैव रश्मिका एंड देन वी ऑल्सो हैव कीर्ति सनन। लेट्स सी हाउ दिस केमिस्ट्री एंड मैजिक टर्न्स इनटू। कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है शाहिद और कीर्ति तो चलो अच्छे हैं, इनकी केमिस्ट्री जम जाएगी। आई कांट इमेजिन द केमिस्ट्री बिटवीन रश्मिका एंड शाहिद, ये तो वक्त ही बताएगा। ऑल्सो ये साल में अगर बड़ी रिलीजेस की बात करें तो है, एक तो मैंने बता दी है ये, उसके अलावा सबसे बड़ी रिलीज है किंग। हाँ जी, हमारे किंग खान की पिक्चर है, दिसंबर में आने वाली है। एंड इनफैक्ट ये बात भी है कि इसमें दीपिका पादुकोण तो होंगी और उनकी बेटी भी होगी, यानी सुहाना भी होने वाली है इस मूवी में। सो वेल अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ सीक्वल्स जो हैं वो आने वाले हैं, सीक्वल्स कह सकते हैं या फिर अ न्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस इज गोलमाल 5 है, दृश्यम में है पार्ट 3। मतलब यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है बॉलीवुड का कि अगर आप ट्रेंड देखोगे यहाँ पर, वेलकम टू द जंगल क्या हो गया, कॉकटेल हो गया, दृश्यम हो गया, ये सारे पार्ट 2, 3, 4 ऐसे ही आ रहे हैं। इज दिस वॉट इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ बॉलीवुड कि अब जो पहला है उसे ही पेश करो, जो चलता आया है उसी को टाइटल को आगे बढ़ाओ, तो ही आप कमाओगे, तो ही पिक्चर चलेगी। इज दैट द न्यू फॉर्मूला? आप मुझे बताइए। 5000 1 6 6 4 माइक से दिल तक आफरीन आपके साथ है।

0: हेलो
1: हेलो सुनील जी।
0: हाँ जी
1: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर। कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं।
0: किस चीज के जी सर?
1: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
0: यार, बहुत बढ़िया।
1: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
0: ठीक है। अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
1: हाँ जी।
0: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
1: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
0: कंडीशन वगैरह?
1: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक हैं आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
0: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपने समझ के कहते हैं ना, अपने कोई ज्यादा।
1: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
0: क्या?
1: पुराना लाइए, नया ले जाइए।
0: क्या भैया पुराना क्या लाऊं भाई?
1: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला।
0: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
1: सर पुराना जो आपने
0: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
1: तो सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
0: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
1: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है। वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
0: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है।
1: अरे अरे तो ये क्या
0: पुराना कहाँ से लाऊं?
1: पुराना आपको लाना पड़ेगा। ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना? यार कमाल कर रहे हैं आप।
0: पेट्रोल फालतू का, पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ।
2: सर जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है।
1: सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
5: उससे भी ज्यादा।
4: लॉटरी लग गई?
5: उससे भी बड़ा।
4: तो फिर बताओ।
5: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरीज से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
3: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।

0: पावर्ड बाय आईपे, बेस्ट रेट, नो स्ट्रेस, आईपे वॉलेट का भरोसा। डाउनलोड कीजिए आज ही आईपे, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर। Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Ghoot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास Sky Jewelry के साथ elegant designs, dazzling collections और हर budget के लिए perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry, design for generations.
5: Refreshment partner Baladna Milk, Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon.
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

देखिए बस ये गाना तो खास आपके लिए ही था। मिर्ची पर कान टिका कर आप जमे हुए हो तो जबरे वाले फैन तो आप हो ही बस। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्रीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और जब आप यहाँ पर कान टिका कर इतना बैठे ही हो तो फिर फायदे की बात तो आपकी करनी पड़ेगी ना यहाँ पर मुझे। यस, आईपे के एब्सोल्युटली बेस्ट एक्सचेंज रेट आज के कुछ इस तरह से 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं। इंडियन रुपीस 26.16, वहीं जनाब 31 रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं पाकिस्तानी रुपीस 76.76। बांग्लादेशी टाका इज एट 33.72, श्रीलंकन रुपीस इज एट 92.69 एंड नेपाली रुपीस इज एट 41.82। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे ढेर उस सारी खुशियां। खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 Miss you one, it's hot.

0: It's hot.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की खूबसूरत सी आवाज और समझना तो अब आपको है। वेरी गुड मॉर्निंग कतर, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और देखिए भाई, ये अब समझाने की बात आ गई है जहाँ पर मैं आपको एक मूवी की कहानी समझाने वाली हूँ। आपको समझकर बताना है कि आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है। और लेट मी टेल यू, आज नो डायरेक्ट हिंट्स, मतलब ये पूरी तरह से मैं इनडायरेक्ट तरीके से ही पूरी मूवी की कहानी बताने वाली हूँ। और कहानी कुछ ऐसी है, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाय। दो अनएम्प्लॉयड ड्रीमर्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है पर एम्बिशन बिलियनर लेवल का है। दोनों को पता चलता है कि एक रिच हैरिस इंडिया आ रही है और दोनों डिसाइड करते हैं कि प्यार बाद में, पहले इनहेरिटेंस सिक्योर कर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि दोनों खुद को मास्टरमाइंड समझते हैं जबकि रियलिटी में दोनों कन्फ्यूजन के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और दिस मिनट में किसी की आइडेंटिटी चेंज हो रही होती है। जिसे रिच समझो वो रिच नहीं है, जिसे सर्वेंट समझो वो सर्वेंट नहीं है, जिसे जीनियस समझो वो डेफिनेटली जीनियस नहीं है। एंड में सबको प्यार तो मिल जाता है, विलन्स पकड़े जाते हैं और ऑडियंस को रियलाइज होता है कि भाई स्टोरी समझना जरूरी नहीं था, यहाँ पर सिर्फ एंजॉय करना जरूरी था। 5000 1896 पर बताइए आखिर आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है। ऑलरेडी यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ खान ने सही जवाब भी दे दिया है। वेरी गुड, क्या बात है। आफ्ताब का भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है, सो विद दिस आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। यू गॉट टू स्टे ट्यून विद मी, दैट इज माइक से दिल तक आफरीन के साथ में। तब तक के लिए ये तो सुन ले अनु मलिक क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, विच वॉज द फर्स्ट सॉन्ग जो आपने पब्लिक में अपनी बीवी के लिए गाया था?
3: I remember the first song I sang for my wife was a composition by Sachin Dev Barman sahab. And I was in college. I was selected to sing in the talent contest. Main tha. Aur wahan main ga raha tha and I had just come to know her. I was finding out where she is. So, I was like, kaun sa gaana gaane wala? So, zehen mein gaana yaad aa gaya. She's looking at, where is she? Tu kahan ye bata is nashili raat mein, maane na mera dil deewana. माने ना मेरा दिल दीवाना है।
2: Only imagine the kind of romantic you are. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
4: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
5: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।

0: साल 2026 आधा खत्म हो चुका है एंड आई डोंट सी एनी मूवी जिसके गाने इतने इम्पैक्ट करे जैसे साल 2025 में सैयारा ने किया था. डोंट यू थिंक सो? वेरी गुड मॉर्निंग कतर, मैं हूँ आफरीन आपके साथ और बस इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जो सुबह है ना वो एकदम पावर पैक्ड तरीके से शुरू हो मेरे साथ में. और भाई मस्ती मस्ती करते करते दिन की शुरुआत जब होती है ना तो पूरा दिन का वाइब भी इस तरह से होता है ना. सो वेल मस्ती मस्ती में यहाँ पर मैंने एक ऐसी मूवी के बारे में बातें की है यहाँ पर जहाँ दो कैरेक्टर्स जो थे ना ये मूवी के ये एकदम कार्टून कैरेक्टर्स ही थे मैं कह सकती हूँ. कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ ये तो मैं थोड़ी बताऊंगी, ये आप बताओगे, लेकिन कहानी मैं जरूर सुनाऊंगी आपको. तो रेडियो सच के वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से सुनो. दो अनएम्प्लॉयड ड्रीमर्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है पर एम्बिशन बिलियनर लेवल का है. दोनों को पता चलता है कि एक रिच हेरिस सिंधिया आ रही है और दोनों डिसाइड करते हैं कि प्यार बाद में पहले इनहेरिटेंस सिक्योर कर लेते हैं. चलो प्रॉब्लम यह है कि दोनों खुद को मास्टरमाइंड समझते हैं जबकि रियलिटी में दोनों कंफ्यूजन के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. हर 10 मिनट में किसी की आइडेंटिटी चेंज हो रही होती है. जो पैसे वाला है वो पैसे वाला नहीं होता है, जो गरीब है वो गरीब नहीं होता है, जिसे जीनियस समझो वो डेफिनेटली जीनियस नहीं होता है. एंड में प्यार सभी को मिल जाता है, विलन्स पकड़े जाते हैं और ऑडियंस को रियलाइज होता है कि अरे भाई स्टोरी समझना जरूरी नहीं है, बस मजे लो. बताओ कौन सी मूवी है? चलिए एक हिंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती हूँ. आइला जूही चावला. वेल ये मूवी कौन सी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है एंड यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट. या यहाँ पर पहले तो मैसेज आया है जाहिद का, देन आई हैव योर आफ्ताब और ये कौन है अफशान का मैसेज आया है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज आया है, ये कौन है अरे जी अंसलम आपका नाम क्या है अंसलम, अच्छा उनका भी मैसेज आया. और सभी का यही कहना है कि आफरीन ये जो मूवी की बात कर रही हो तो ये है अंदाज अपना अपना. हाँ जी आमिर खान और सलमान खान की ये मूवी एंड दिस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब आमिर और सलमान साथ आए थे. और जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना इट वॉज अ सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म. यस यकीन मानो ये पूरी तरह से फ्लॉप थी मूवी. ओवर द इयर्स इसे कल्ट क्लासिक माना गया था. अच्छा ये मूवी के दौरान भी ना नो वन वाज टॉकिंग टू ईच अदर, कन्ना करिश्मा रवीना से ना रवीना, आमिर से ना आमिर, सलमान से, मतलब पहले तो आमिर खान परेशान थे सलमान खान के काम के तरीके से. एक आमिर खान परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, टाइम पर आते हैं, उससे पहले ही आकर रिहर्सल्स करते हैं और सलमान खान अपने टाइम के हिसाब से आके यो झटाझट वन टेक में सीन करके निकल जाते हैं. भाई ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है? ये सलमान खान का आमिर खान को बिल्कुल समझ में नहीं आया. लेकिन ओवर द इयर्स नाउ एज यू सी द थ्री खान्स आर बेस्टीज, है ना. अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ. वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स फॉर दिस फ्रॉम दिस मूवी आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में.
1: ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, ये रात
0: मतलब आई एम श्योर ये गाना आप कितने साल के बाद सुन रहे हो, कम से कम 10-15 साल बाद तो सुन रही होगा ना
1: के दिल मेरा धक धक डोले.
0: तो रेडियो सच के वॉल्यूम हाई करके सुनो यार और मजे लो.
1: मेरा धक धक
0: एंजॉय दिस ट्रैक माइक से दिल तक आफरीन के साथ.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, अब मजा आया ना कि भाई कोई नई मूवी का नया गाना पेश किया जा रहा है। नहीं तो हम यही देख रहे हैं ट्रेंड के भाई मूवीज तो आ रही हैं, सीक्वल्स आ रहे हैं, नेक्स्ट वर्जन्स आ रहे हैं, लेकिन गाने वही पुराने। अगर मूवी नई भी है तो भी कोई पुराना गाना इस मूवी में डालना ही होता है। लेकिन कॉकटेल 2 का ये गाना मशूका, राघव चैतन्य महमूद की आवाज में, राइट हियर, अभी आपने सुना। और मिर्ची घड़ी का इशारा जो है वो कर रहा है सुबह के 9 बजे के 7 मिनट की तरफ। हाँ जी, 9:07 की तरफ। यू आर स्टे ट्यून विद मी, दैट इज सिंपली आफरीन। करण औजला की आवाज में अगला गाना एंजॉय करके मिलते हैं फिर से ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

वेल, करण औजला की आवाज में ये गाना मुझे तब पता चला जब मैंने ये इंस्टाग्राम के रील पर देखा। मतलब गाना तो पता रहता है, लेकिन वो एक गाने सर के अंदर दिमाग में आपके जहन में फिट हो जाता है ना, वो रील ही कर सकता है बस एक। Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings and talking about reels. मुझे ये बताइए भाई कि आपका algorithm क्या कहता है? मतलब आपका जो Instagram का जो एक consumption है या फिर social media का consumption का ये TikTok पे या YouTube पे, what is the kind of reels which is been shown on your thing? क्योंकि देखिए उससे पता चलेगा कि भाई जनरली यही होता है ना कि अमूमन हम जो बातें करते हैं वो झट से आपके फोन पर आता है। ये तो होता ही है, राइट? वी ऑल सीन दैट कि यू टॉक अबाउट सम प्लेस, दैट थिंग इज देयर, दैट प्लेस इज शोन, यू टॉक अबाउट सम प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपके वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है। तो बस मैं जानना चाहती हूँ, जैसे माई रील इज फिल्ड विथ ट्रैवल, ट्रैवल के रील्स आते हैं, बॉलीवुड के रील्स आते हैं, आपका क्या कहता है एल्गोरिथम? कभी कभार मुझे वो एआई वाले ना, वो खाने के बीच में जो लव स्टोरीज होती है, छोले भटूरे की लव स्टोरीज, आई डोंट नो व्हाई दिस इज वियर्ड, आई एम कन्फेसिंग के हाँ यार वो ए हल्कू रे एंड ऑल दीज थिंग्स, ये मुझे भी आते हैं बहुत। अब मैं स्किप करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो मेरे कहीं ना कहीं इधर से निकल जाए, लेकिन देयर इज, यू नो व्हाट, there is a way you can control your algorithm. Did you know that? अगर आप settings में जाते हो तो वहाँ पर एक option है कि आप क्या देखना चाहते हो, ठीक है? ये मैं exactly कौन सा वाला है ना वो option, वो ढूंढ के मैं आपको बताती हूँ। वो मैंने किया भी था बीच में एक बार कि you can choose, you can put your content preferences कि हमें ये चीज़ें देखनी है, ये specific algorithm, yes it is in content preferences, settings and activities में जाके आप content preferences पे अगर आप जाओगे तो your algorithm में आप देख सकते हो कि आपको क्या content दिखाया जा रहा है, there are keywords and what you want to see, you can add it on your own. जैसे मेरे यहाँ पर अभी फिलहाल लिखा है कि कतर लिविंग, कतर के बारे में है, एंड देन टूरिज्म के बारे में है, बॉलीवुड ट्रिविया के बारे में है, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है क्योंकि अभी अभी मैं हज पर जाकर आई हूँ तो उसके भी काफ़ी सारे वीडियोज है। यू टेल मी यार, गो एंड चेक इसी बहाने कि आपका एल्गोरिथम क्या कहता है। दिस विल इंडिकेट कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो और क्या करना चाहते हो, वो आप कंट्रोल लीजिए अपने हाथ में, बेहतर है। नहीं तो क्या है भाई, दुनिया आपको चलाती रहेगी, उस तरह से आप चलते रहोगे। फिलहाल तो आपकी गाड़ी का मूड क्या कहेगा, क्या चलाएगा, ये तो हम डिसाइड करेंगे। अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना सुन लीजिए एंड एंजॉय कीजिए माइक से दिल तक आफरीन के साथ अनवर चीज हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burka, burka. La fiesta la burka.
2: Mirchi, burka.
3: हेलो
4: हेलो नवनीत
3: yeah.
4: नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
3: हाय नवेद,
4: क्या हाल चाल है?
3: बढ़िया है।
4: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
3: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
4: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
3: हाँ?
4: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
3: या, मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
4: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
3: मिस्टर दिलीप।
4: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
3: मैं क्या कुछ गलत
4: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
3: अब ऐसी बात क्या
4: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
3: अब मैं क्या
4: पूछूं यार, तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
3: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
4: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं, उसमें ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
3: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया।
4: अरे तो
3: तरफ से मैं माफी मांग,
4: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
3: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
4: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
3: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
4: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
3: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया है।
4: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरे तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे ही अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
3: नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
4: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
3: कुकड़ुकू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
6: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
5: अभी कॉल करें 3100-0813।

0: देखो आप जरूर सोचो कि भाई आफरीन में क्या चीज है, ऑलरेडी वीकेंड की बातें कर रही है। देखो मुझे तो मजा आता है कि आगे की अच्छी वाली चीजों के बारे में बातें करने का। सो हियर इट इज, वीकेंड इज ऑन इट्स वे, एंड उसी चलते मैं हमेशा आपको बताती हूँ ना कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। घर में बैठे हो तो भाई OTT पे क्या करना है ये मैं जरूर आपको बताऊंगी।
1: अरे भाभी जी एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
3: अरे मार्केट में नया क्या है,
0: वेल देखो नया तो ऐसा है कि भाई अक्षय कुमार की जो पिक्चर आई थी भूत बंगला, हाँ थिएटर्स में आई थी, आपने देखा नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि ये आ गई है OTT पर, यस नेटफ्लिक्स पर। दिस इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज ऑन 12th of June। प्रिया दर्शन और अक्षय कुमार का ये रीयूनियन तकरीबन 14 साल बाद हुआ था। एंड देन मूवी कैसी रही ये तो भाई थिएटर से जितनी जल्दी निकल गई है और OTT पर आ गई है इससे तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन एक होता है ना अंदर से कि भाई नहीं देखना है भाई क्या क्या है ये, लेट्स हैव अ लुक। उसके अलावा देयर इज वन मोर, माँ है ना इज अ लाइट हार्टेड नॉन फिक्शन कॉमेडी कुकिंग शो। ये कुकिंग शो है विच इज होस्टेड बाई शिल्पा शेट्टी और ये Zee5 पर स्ट्रीम होने वाला है। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग फ्रॉम 12th of June और यहाँ पर काफी सारे कॉमेडियंस आपको नजर आने वाले हैं, अली असगर, गौरव कपूर, चंदन प्रभाकर एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ये सारे कुकिंग शो पर आकर अपना कॉमेडी का तड़का भी देंगे और साथ ही साथ कुछ खान पकवान भी पेश करने वाले हैं। सो दिस इज द वन माँ है ना ऑन Zee5। अपार्ट फ्रॉम दैट करिश्मा कपूर इज बैक विद सम मैजिक। ब्राउन नाम का इनका एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज जो है ये Zee5 पर चल रहा है एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी बोल्ड एंड डी ग्लैम अवतार ऑफ करिश्मा कपूर और आई थिंक सो है जो क्राइम और ये सबसे बहुत एंटरटेन होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है देखने के लिए। एंड देन वन माय फेवरेट यार गुल्लक Season 5 इज हियर, मतलब यार OTT सीरीज में शायद ही कोई है जो Season 5 तक पहुंचा एंड गुल्लक इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ देम। वेल सोनी लिव पर ये है एंड दिस इज समथिंग यू शुड नेवर मिस, स्पेशली तब जब फैमिली के साथ देखने के लिए कोई कॉन्टेंट आ गया है तो वाई नॉट राइट। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
7: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है? शाहिद कपूर। बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
2: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क विश्क ऑब्वियसली। द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन।
1: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनिधि चौहान की आवाज, गायत्री अय्यर का साथ, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड का ये गाना। आई जस्ट लव द सॉन्ग एंड द वाइब ऑफ द सॉन्ग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और वक्त हो चला है कि आफरीन अपने अंदाज में कुछ जज्बात, कुछ शायरी के अंदाज में पेश करे आपके लिए। वो देखा है कभी कि सबसे ज्यादा तन्हा कौन होता है, वो जो अकेला है या वो जो भीड़ में होकर भी समझा ना जाए? क्योंकि तन्हाई सिर्फ लोगों का ना होने से नहीं आती, कभी कभी तन्हाई तब आती है जब दिल की बात समझने वाला कोई ना हो। और बस इसी बात पे आज की आफरीन की डायरी से शायरी,
1: आफरीन की डायरी से शायरी, शायरी
0: के पत्थर की है दुनिया जज्बात नहीं समझती, पत्थर की है दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द ये बेवफा रात नहीं समझती। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जिंदगी में लोग बढ़ जाएंगे तो तन्हाई कम हो जाएगी, लेकिन चांद के पास भी तो हजार सितारे होते हैं। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

मधुबंध बागची दिव्या कुमार की आवाज में ये गाना साथ देते हुए सचिन जिगर वुड से के साल 2025 का सुपर डुपर हिट गाना रहा है ये। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। मैं हूँ आफरीन आपके साथ और अजीब वेलकम शेलकम जो कर रही हूँ मैं टाटा बाय बाय कहने के लिए ही कर रही हूँ, ठीक है ना। हो गए भाई 4 घंटे हो गए, इनफैक्ट हफ्ते का ये चौथा दिन है, करेक्ट राइट। हमारा हफ्ता तो संडे शुरू होता है, हफ्ते का ये चौथा दिन है, कल वीकेंड आने वाला है, महीने का 10वां दिन। ओ माई गॉड, वी आर 1/3 ऑलरेडी डन विद दिस मंथ, एंड जो सेकेंड हाफ है साल का वो भी खत्म हो गया भाई। 10 दिन हो गए, मतलब रफ्तार, लुक एट दिस रफ्तार। और किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि जब आपके अच्छे वाले दिन चल रहे होते हैं ना, कि आप बड़ी खुशियों वाले दिन बढ़ा रहे होते हो, कि आपकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा होता है, तब ना दिन की रफ्तार जो होती है, वक्त की रफ्तार जो होती है, वो तेज़ हो जाती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, जो भी रफ्तार में चल रहा है, ये सही चल रहा है। और बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में भी ना इसी तरह से खुशहाली हमेशा कायम रहे। और बस इसी उम्मीद के साथ लेना चाहूँगी अलविदा, मिलूंगी कल फिर से सेम टाइम सेम शो, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी सुबह वाली आदत यानी मिर्ची मॉर्निंग माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट। टाटा बाय बाय, सायोनारा तो कहा ही नहीं, सायोनारा। गुरु और नीति की आवाज में गाना तो सुन लीजिए, सुनते रहेगा मिर्ची। इट्स हॉट।

0: మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ. कॉलेज में कैसे जाऊँ?
1: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना.
2: साले का खोपड़ी तोड़, साले का.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: यार देखो, हर दिन खास हो ये तो जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ खास हो ये जरूर है।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ ही चुकी हूँ। यार पता है क्या, जिंदगी में ना हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ परफेक्ट हो ये जरूर होता है। यार हम ना अक्सर अपने दिन को जज करते हैं बड़े अचीवमेंट्स में, बड़े प्रमोशंस में, डील, रिजल्ट, इन सारी बातों के चलते। लेकिन जब वो नहीं मिलता तो लगता है यार आज का दिन बस यूं ही गुजर गया, बिल्कुल भी खास नहीं था। लेकिन यार सच कहूं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें अक्सर छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं, जिन्हें कई बार हम नोटिस करना बस भूल जाते हैं। सुबह घर से निकलते वक्त किसी अपने की वो मुस्कान, किसी दोस्त का अचानक से मैसेज आ जाना, ट्रैफिक में किसी अनजान का हमें रास्ता दे जाना, या फिर बस एक कप चाय के साथ मिला वो सुकून। यार खुशियां जो है ना, हमेशा बड़े पैकेजिंग में नहीं आती, कई बार छोटे छोटे लम्हे खुशियां अपरंपार दे जाते हैं, बस उन्हें महसूस करने की देरी है। वो कहते हैं ना, हर रोज कोई नई कहानी नहीं होती, हर रोज कोई बड़ी मेहरबानी नहीं होती, मगर जो दिल से देख ले जिंदगी को, उसके लिए कोई सुबह आम नहीं होती। स्टडी टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Mirchi. Iskra bana, puska bana, saka bana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: से बोल रहे
1: हैं? हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: हाँ, बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: Oh my God.
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम, प्रॉब्लम
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली। एरोप्लेन भेजूं?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुची पुची कुची पुची. ओके स्वीटहार्ट बाय. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
1: गोलगप्पे नहीं होते मैम
2: हमारे, चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो.
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं.
1: क्या खाते हैं
2: मैम? मुर्गा
1: मैम, वो भी नहीं है.
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता. हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए.
3: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: यार मैं तो सोच रही हूँ कि अपने नए घर में ना बस आपको दस्तक दे ही दूँ।
1: मिर्ची अंशु
0: इतना जान लीजिए वहाँ पे सी व्यू है, रिसॉर्ट लाइफस्टाइल है, साथ ही बीच का साथ है। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। अगर आपका सपना बिल्कुल मेरे सपने से मिलता जुलता है तो बस अपना सपना आप साकार होने वाला है। बिकॉज इस वक्त अगर एक नए डिसीजन को देखें तो नॉन कतरीज की प्रॉपर्टी ओनरशिप में कतर में एक नया नाम जो है वो ऐड हो चुका है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट समाइस्मा रिसॉर्ट एंड बीच प्रोजेक्ट। क्या बात है यार, तो बस अब वो सी वाला व्यू हो गया, यह सारी लक्जरी लाइफस्टाइल हो गई, आपकी जिंदगी में ऐड हो ही जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर आप लिस्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो नॉन कतरीज के लिए 10 डेजिग्नेटेड एरियाज हैं जहां पर हम बिल्कुल प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। वेस्ट बे, द पर्ल कतार, अलखोल रिसोर्ट, दफना जोन 60 एंड 61, ओनाइजा, लुसेल, अल खराइज, जबाल थोलाइब एंड समाइस्मा रिसोर्ट एंड बीच प्रोजेक्ट विच हैपन्स टू बी अ न्यू एडिशन। बढ़िया है जी, तो अब जाइए, अगर आपका दिल करे कि ऐसा कोई घर लेना है, बिल्कुल पैसे खर्च करिए एंड घर जो है लेकर आइए। आपके घर को अपना समझते हुए मिर्ची की पलटन जो है ना बिल्कुल कब्जा करने आएगी। दावत पे बुलाओगे तो एंजॉय करने आएगी। क्या कहती पब्लिक। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका

0: यार मैंने तो कतर के फ्यूचर से मुलाकात बस आज कर ही ली।
1: मिर्ची अंशु
0: हेलो वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल इस वक्त आपको ये बता दूं कि अगर आप दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर के पास से गुजरें तो आपको सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं बल्कि कतर के फ्यूचर की एक झलक देखने को मिल ही जाएगी। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट कतर 2026 जो इस साल अपना 22nd एडिशन सेलिब्रेट कर रहा है। एंड सबसे खास बात, ये कतर के सबसे एस्टैब्लिश्ड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एग्जीबिशन में से एक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में आखिर हमको क्या ही देखने को मिलेगा, वो सब कुछ देखने को मिलेगा दैट बेसिकली हेल्प्स बिल्ड अ सिटी फ्रॉम स्मार्ट बिल्डिंग्स एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस टू एआई पावर टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग इनोवेशंस, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के साथ साथ फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर आइडिया। देखिए बात इतनी है, जब भी हम किसी नए मॉल, स्टेडियम या मेट्रो स्टेशन में जाते हैं ना, तो हम एक आइकॉनिक बिल्डिंग को देखते हैं, लगता है भाई क्या कमाल का कंस्ट्रक्शन है। लेकिन प्रोजेक्ट कतर आपको वो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दिखाता है जो उन प्रोजेक्ट्स के पीछे काम करती है। सो बेसिकली दिस इज वेयर द फ्यूचर गेट्स बिल्ट बिफोर इट बिकम्स रियलिटी। तो बस अगर फ्यूचर से मुलाकात करनी है एंड साथ में मुझसे भी मुलाकात करनी है तो प्रोजेक्ट कतर 2026 अटेंड करने दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पे पहुंच ही जाइए। मिलूंगी मैं आपको, स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
3: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच. मराठी गाना था वो. टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी. इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा.
2: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर. मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: यार ये बात तो तय है कि अपनी जिंदगी में एक ना एक बार मुझे अपने दोस्तों के साथ वो स्पेन रोड ट्रिप में जरूर जाना है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. This is Arjan Shiv with you. ये बात आप भी अग्री करेंगे कि पिक्चरों ने, फिल्मों ने हमारी जिंदगी में क्या गजब कमाल का रोल निभाया है। कई फिल्मों ने हमें रुलाया, कईयों ने हमें हंसाया, कईयों ने मोहब्बत करना सिखाया, तो कईयों ने टूटे हुए दिल को फिर से कैसे जोड़ते हैं ये बात सिखाई, कईयों ने हमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन से पूरी तरह से भर दिया, तो कईयों ने रिश्तों की इज्जत करना सिखाई। या लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसने सही मायने में मुझे जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, तो वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए इस फिल्म की डिटेल्स तो आप में से कईयों को बताऊंगी, लेकिन इस फिल्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इस वक्त मैं आपके बीच पेश करूं। आपको वो याद है स्पेन रोड ट्रिप, वो दोस्ती, वो लाइफ लेसन, स्काई डाइविंग, टोमेटिना, एवरीथिंग। आपको मालूम है इस फिल्म के रिलीज के बाद टूरिज्म जो है इंडिया से स्पेन के लिए कुछ इस तरह से बढ़ा कि स्पेन टूरिज्म बोर्ड ने एक्चुअली इस बात को एक्नॉलेज किया कि इस फिल्म के इम्पैक्ट की वजह से इंडियन सब ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के लिए स्पेन आने लगे। इमेजिन, अ बॉलीवुड फिल्म लिटरली चेंज ट्रैवल ट्रेंड्स। Now people suddenly wanted road trips, adventure sports, bachelor trips, solo traveling. तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये एक फिल्म नहीं थी भाई, इसने एक entire generation का पूरा mindset बदल दिया। अब देखिए, इसके पहले हमारे लिए सक्सेस का मतलब होता था जॉब एंड स्टेबिलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद लोगों ने एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करना शुरू किया। और वैसे यही एक्सपीरियंस हुआ था दिल चाहता है के बाद, जब लोगों ने गोवा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखना शुरू किया। आप मुझे बताएं कौन सी फिल्म ने आपको हाईली इन्फ्लुएंस किया। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: emergency helpline?
1: Yeah. Hi there. What's up? Tell me.
0: Sir, computer में virus घुस गया है. क्या करूँ?
1: Oh my God. आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: भाई साहब, औरों का दिमाग जो है ना, जरा बाद में हिलाइएगा, इस वक्त अपना शरीर ही हिला लो।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. यार ये जो मानव प्रजाति है ना, ये बड़ी कमाल है। जरा सोचो, जब भी तबीयत जो है जरा ज्यादा खराब हो, लगे कि ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक हो गया, डाइजेशन जो है खराब हो गया, शरीर में काफी हेवीनेस लग रहा है, हम देखो कैसे हिल डुल के इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, वो मोटी मोटी गोलियां खाएंगे। लेकिन ना, सतर्कता के तौर पर उसके पहले जो अभियान अपनाना है हम ना, वो ना करेंगे। चलिए, इस वक्त आपकी सेहत को सुधारने के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताई दूं। क्या आपको मालूम है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की वॉक After meals, it can actually help control blood sugar spikes, improve digestion and reduce heaviness after eating. तो चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10 मिनट भी चलते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों से आप बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाना खा के तुरंत जो है आपको जिम पहुंच जाना है। मैं हल्की फुल्की वॉकिंग की बात कर रही हूँ, और साइंस जो है एक ही बात कहता है, इवन स्लो वॉकिंग आफ्टर फूड हेल्प्स योर मसल्स यूज ग्लूकोज बेटर। तो अब सेहत को अपने काबू में करने की बारी आ गई है, शरीर को जरा हिलाने डुलाने की बारी आ गई है, औरों के दिमाग को क्यों हिला रहे अपनी तबीयत खराब करके, है ना। स्टेडियो डिवर्ची बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vie fala burga.
1: Energy, burga. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए, आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स आए जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड करते.
3: बकवास बंद कर, बकवास बंद कर. कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड कर.
3: बकवास बंद कर, बकवास बंद कर.
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: शराब
1: बोलते हैं.
3: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है, मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. तुम मेरे शो में आके बैठो, मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची फ्रेश माल,
1: फुल ऑन मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शबीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: यार मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि इंडिया में मैंगोस की कितनी वैरायटी आती होंगी?
2: मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. अगर इंडिया में आम की वैरायटीज को हम सोचने की कोशिश करें तो जहन में ख्याल आएगा शायद 50, अरे 100 और क्या। भाई साहब इतना समझ जाइए कि इंडिया में अगर आम की वैरायटी को आप देखेंगे तो नई से नई 1000 वैरायटी से ज्यादा मैंगोज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक सुना आपने, इसीलिए तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, जैसे कि मैं आपके दिल की रानी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आम का प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है, लेकिन जो मैंगोज उगाए जाते हैं उनमें से बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा जो है ना एक्सपोर्ट होता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो इट इज जस्ट 1% मैंगोज एट इंडिया एक्सपोर्ट्स, क्योंकि बाकी पूरा का पूरा जो है वो इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है। और हम इंडियंस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया आम जैसे फलों का राजा नहीं है, इनफैक्ट हमारे दिल का राजा भी जो है ना, खासकर गर्मी के मौसम में ये जरूर है। चलिए जी, जितने भी इंडियन मैंगोज के लवर्स हैं आपके लिए एक अच्छी वाली खबर मैं बताई दूँ। थर्ड इंडियन मैंगो फेस्टिवल यानी कि हम्बा एग्जीबिशन जो है 18th ऑफ जून से लेकर 27th ऑफ जून तक सुख वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में कंडक्ट किया जाएगा। फुल्ली एयर कंडीशन एरिया है तो वहां पे पहुंचना जरूर, एंड दिस इज हैपनिंग इन कोलैबोरेशन विद द एम्बेसी ऑफ इंडिया। तो भैया जाइए, ढेर सारी शॉपिंग करके आइए, उसके बाद आप और हम मिलकर जो है आम के मजे लेंगे। क्या कहती पब्लिक, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: ताजा खबर, ताजा खबर।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: देखिए बात इतनी है कि आज की ये खबर शायद हेडलाइंस में छोटी लगे, लेकिन कई फैमिलीज में इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा है। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची, एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वाल इस वक्त कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले कुछ नॉन कतरी स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक और स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फी एग्जेम्पशंस को एक्सपैंड कर दिया है, एंड दो कैटेगरीज को इस एग्जेम्पशन लिस्ट में ऑफिशियली ऐड किया गया है। नंबर वन, होल्डर्स ऑफ कतरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, एंड नंबर टू, होल्डर्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड्स। यानी अगर कोई स्टूडेंट इन कैटेगरीज में आता है तो उसे अब गवर्नमेंट स्कूल्स में टेक्स्ट बुक्स और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं देना होगा। यार बात इतनी है ना कि कभी कभी एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ क्लासरूम्स बनाने से नहीं बढ़ती, कभी कभी एक छोटी सी या सिंपल सी पॉलिसी चेंज भी किसी फैमिली के फाइनेंशियल बर्डन को काफी हल्का कर देती है। एंड ये बात जो है कतर ने हमें जरूर बताई है, जिस तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जिस तरह के एजुकेशन बेनिफिट्स हमें यहाँ मिलते हैं ना भाई साहब, ऐसा लगता है कि जो ख्वाहिशें थी, जो मुरादें थी, हमारे सपने थे, वो साकार होने में यहाँ की लीडरशिप और इस देश ने काफ़ी बड़ी हेल्प की। दिल से सलाम, बड़ा वाला थैंक यू। बच्चों को कहें अच्छे से पढ़ें, एंड आप उन्हें पढ़ाते रहें, लेकिन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के खजाने को खोलने के लिए टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, बिंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: बादशाह आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए हैं, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
3: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
2: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सेल्फी ले लो, बर्फ का गोला ले लो।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. कुछ याद आया? अरे कुल्फी, बर्फ का गोला। यार कभी कभी लगता है कि हमारे बचपन की खुशियां कितनी सिंपल हुआ करती थी ना। आज के दौर को देखने की कोशिश करें तो एक्साइटमेंट के लिए क्या कुछ नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, फ्लैश सेल्स, वीकेंड प्लान्स, डील्स, व्हाट नॉट। लेकिन एक वक्त था जब गली के कोने से एक आवाज आती थी, कुल्फी ले लो, बर्फ का गोला ले लो। और हम सब छोड़कर भागते हुए बाहर निकल जाते थे। ना कोई ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऐप, ना कोई फूड ऐप, बस एक ठेले वाले भैया होते थे, एक छोटी सी घंटी होती थी, दिल में बड़ी सी खुशी आ ही जाती थी। वो 50 पैसे की आइसक्रीम, 1 रुपए का बर्फ का गोला, एंड ऊपर से वो लाल हरा पीला सिरप, मेरा फेवरेट वो काला खट्टा।

उस वक्त लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी जो है ना बस हमारे हाथ में है। और सबसे खास बात क्या है पता है, उस आइसक्रीम का टेस्ट इतना याद नहीं है ना मुझे, उससे ज़्यादा उसका इंतज़ार याद है। शाम को दोस्तों के साथ साइकिल चलाना, घर वालों की डांट खा कर भी थोड़ी देर और खेलना, और फिर वो गोला खाते हुए घर लौटना और मम्मी की डांट सुनना कि आज फिर कपड़े गंदे कराए तुम। शायद जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन खुशियां जो है ना बड़ी आसानी से मिल जाती थी यार। यार मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, अगर आपके पास एक टाइम मशीन हो एंड 10 मिनट के लिए सही अगर आपको वो बचपन के दौर को फिर से जीने का मौका मिले तो आप सीधा कौन सी याद में जाएंगे, जरूर बताना। 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: se karenge sabka swagat.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
2: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: देखो भाई, इसे कहते हैं भीषण गर्मी।
1: मिर्ची अंशु
0: हाई गर्मी, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ। यार सच कहूँ, हम ना बेसिकली उस फेज में इस वक्त एंटर कर चुके हैं जिसे कहीं हम अपने देश में नौ तपा कहा करते थे, लेकिन ना वो नौ दिन नहीं, 13 दिन का सफर जो है हमारी जिंदगी में कंटिन्यूड है। यानी कि कतर के जो 13 सबसे गर्म दिन होने वाले ना इस साल के, उसे हम मिलकर इस वक्त जी रहे हैं। तभी तो शाम के समय भी जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो लगता है भाई नेचुरल वाली हवा से सिकाई जो है ना तुम्हारी हो ही गई। तो अब घर में अगर कोई लफड़ा हो तो तुम बाहर जाकर मुंह फुलाकर बैठ भी नहीं सकते, लगता नहीं भैया घर वालों को झेल ले वही बेटर है। देखें आज के मौसम का हाल क्या है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: वेल, अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 47, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 35। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, फीलिंग जो है 50 से कम नहीं है। अरे उम्र की बात नहीं करी, टेम्परेचर बता रही हूँ। तुम्हारी उम्र हर किसी को ऐसे पब्लिकली थोड़ी ना बताती चलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, कीप योरसेल्फ फुल्ली हाइड्रेटेड। एंटरटेनमेंट के तड़के के लिए, दिमाग इन कलेजे की ठंडक के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची के साथ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La virtua la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो नवनीत
2: या
3: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
3: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
3: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ, बन गया क्या
3: यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
3: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: या मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
3: पापा का नंबर? नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
3: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
3: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार?
2: अब ऐसी बात क्या
3: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
3: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं, उसमें ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो तरफ से मैं माफी
3: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफिया मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
3: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
2: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
3: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
2: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
3: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
2: नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
3: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो
2: कुकड़ुकू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
6: उससे भी ज्यादा।
5: लॉटरी लग गई?
6: उससे भी बड़ा।
5: तो फिर बताओ।
6: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
4: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।

वैसे अगर हम देखने की कोशिश करें तो काफी उछल कूद है यहाँ. वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिठी एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. पैसे में जिस तरह का उछाल है उसे देखकर मैं ये ना कहूं तो फिर क्या ही कहूं. अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.16, पाकिस्तानी रुपीज 76.76, बांग्लादेशी टाका 33.72, लंकन रुपीज 92.69 एंड इसके साथ ही नेपाली रुपीज 41.82. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यार वैसे तो मम्मी हमेशा ही अच्छी लगती थी, लेकिन जब सजती सवरती थी ना तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. यार सच कहूं, अगर बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूं ना तो मुझे वो पल बहुत अच्छा लगता था जब मम्मी बहुत अच्छी तरह से तैयार हुआ करती थी। वो साड़ी पहनना, वो बिंदी लगाना, वो काजल लगाना और उसके बाद वो ज्वेलरी पहनना बड़ी प्यारी लगती थी यार। मतलब मम्मी जो है कुछ अलग ही लगा करती थी एंड मैं ना बस चुपचाप टिक कर उन्हें बैठ कर देखा करती थी एंड मम्मी धीरे धीरे बस मुस्काती थी। अलग ही दिन थे यार। कहते हैं ना, जिस माँ ने हमारे लिए सब कुछ किया है, कभी कभी हम उसके लिए अगर ज़रा कुछ कर जाए ना तो वो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी कोशिश जो है वो करते रहना चाहिए। अगर आपको भी लगता है जब आपकी मम्मी सजती सवरती हैं तो बड़ी प्यारी लगती हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर स्काई ज्वेलरी पहुँच जाएँ। वाल अगर मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 की बात करूँ तो हमारे ज्वेलरी पार्टनर हैं स्काई ज्वेलरी, जहाँ पर आपको मिलती हैं एलिगेंट डिजाइंस, डार्जलिंग कलेक्शंस एंड हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंड अभी तो मौका भी है, दस्तूर भी। इस वक्त अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आप मेगा ड्रॉ में एंटर हो सकते हैं, जिसे निकाला जाएगा 23rd of June को। एंड आपके पास चांस है कि आप एक ब्रांड न्यू लेक्सस गाड़ी जो है वो जीत ही जाए, तो क्या पता ज्वेलरी के साथ साथ पापा के लिए गाड़ी भी आ जाए। तो टिक के बने रहिए और सुनते रहिए कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: देखो घड़ी का ये जो कांटा है ना, ये कुछ तो इशारा कर रहा है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. वैसे मेरा घड़ी का कांटा मुझसे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बेटा एक बजने वाले हैं, मतलब तुझे भूख लगने वाली है, खाना खाने की तैयारी कर ले। यार मेरे साथ ना सिस्टम बड़ा अलग है, मुझे ऑर्गेनिक नेचुरली भूख नहीं लगती, मुझे टाइमिंग के हिसाब से भूख लगती है। 9 बज के ब्रेकफास्ट का टाइम है, 1 बज के लंच का टाइम है, शाम हो गई स्नैक्स का टाइम है। एंड आई बिलीव समहाउ ये अच्छी बात है, यू नो सिस्टम जो है पूरी तरह से मेरे शरीर का खाने पीने को लेकर तो सेट है, तो मेरी बॉडी को मुझे अडेप्ट करने में ज़्यादा तकलीफ होती। एंड ऐसा कहा भी गया है ना, आपकी बॉडी तब मिसबिहेव करती है या उपटांग हरकतें करती है जब कोई स्ट्रक्चर ना हो, जब कुछ सेट ना हो, जब सब कुछ खाने पीने को लेकर एक ढंग से चलेगा ना भाई साहब, तो तुम्हारी बॉडी भी जो है ना तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, तुम जैसा चाहोगे तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। करके देखो, काफी मजा आता है। नहीं वैसे एक और तरीका है, अगर कुछ अच्छा खाना बनाओ, कुछ अच्छा लाओ तो अंशु को साथ में खिलाओ, उससे भी सब कुछ अच्छा होता है। टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन। मिर्ची इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ, कॉलेज में कैसे जाऊँ?
2: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना।
3: साले का खोपड़ी तोड़ साले का।

0: आज न जाने ये कॉफी पीने वाली इंसान को ना सुबह सुबह चॉकलेट मिल्क पीने का बड़ा दिल कर रहा था।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. ये मतलब जो यादें हैं ना, ये टेस्ट के फॉर्म में भी आती है। हाँ, मतलब जो खाने का टेस्ट होता है उसमें भी बड़ा तगड़ा नॉस्टैल्जिया होता है। एंड आई ऑल ऑफ अ सडन ना वॉज जस्ट हैविंग दिस अर्ज, दिस क्रेविंग, कि मैं ना किसी तरीके से बचपन के जो चॉकलेट पाउडर्स हम पिया करते थे ना दूध में मिला के, वो वाला दूध पीऊँ। आजकल का वो जो फैंसी चॉकलेट मिल्क है उसकी बात नहीं करी थी मैं, एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट चॉकलेट मिल्क जो हम स्कूल जाने से पहले रोज सुबह पिया करते थे, और जो मेरी तलब थी ना वो इतनी तेज थी, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन जो कि दूध पिया करती है या दूध पसंद किया करती है, लेकिन बचपन में मैं दूध पिया करती थी, स्कूल जाने से पहले ये रूटीन हुआ करता था। और आज ऑल ऑफ अ सडन सुबह सुबह ना ऐसा फील हुआ कि यार वो सुबह सुबह जो हम स्कूल जाने से पहले चॉकलेट मिल्क पिया करते थे ना, वो पिया जाए। उसका टेस्ट बार बार मेरे मुंह में आ रहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इस तरीके से किसी खाने की अर्ज होती है, क्रेविंग होती है, जो हमारे बचपन से जुड़ी है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ यादें दे रही है, उसे हम इतना आज पसंद नहीं करते, लेकिन स्टिल ऑल ऑफ अ सडन एक हवा सी आती है और आपको लग रहा होता है कि नहीं यार, आज तो यही खाना है और यही पीना है। डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है। और फिलहाल हम सब के साथ एक चीज तो होती है इस वक्त, एंड दैट इज मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s का गियर लगता है। तो बस जी, फिर आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vyet bala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो सुनील जी।
2: हाँ जी
3: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर। कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं।
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
2: यार, बहुत बढ़िया।
3: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
2: ठीक है। अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
3: हाँ जी।
2: इसी का पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
2: कंडीशन वगैरह?
3: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक है, आप ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक, कोई आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना, अपने कोई ज्यादा।
3: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
2: क्या?
3: पुराना लाइए, नया ले जाइए।
2: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला।
2: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
3: सर पुराना जो आपने
2: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
3: तो सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
2: धुआं मैं कहाँ से इकट्ठा करूँ?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है। वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है।
3: अरे अरे तो ये क्या
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा। ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना? यार कमाल कर रहे हैं आप। सर जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है। सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सबको ये तो पता है कि आफ्ताब शिवदासानी की डेब्यू फिल्म मस्त है, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि राजपाल यादव की डेब्यू फिल्म भी मस्त ही है।
0: मिर्ची VCR।
1: राम गोपाल वर्मा की मस्त में जब आफ्ताब ने काम किया तो वो मात्र 20 साल के थे। और ये फिल्म आफ्ताब को कैसे मिली पता है? वेल एक्चुअली राम गोपाल वर्मा अर्जुन रामपाल को मूवी में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब यही बात अनुराग कश्यप से कही तो अनुराग ने राम गोपाल वर्मा को बताया कि अर्जुन इज अ बैड एक्टर, विच वॉज अ लाई, क्योंकि वो अर्जुन रामपाल से अपना बदला ले रहे थे और वो भी कॉलेज टाइम्स का बदला, क्योंकि उनके कॉलेज टाइम में अनुराग जिस लड़की को पसंद किया करते थे अर्जुन उसी लड़की को डेट कर रहे थे और ये चीज उनके दिल में काफी सालों तक रही, जिसका सिला ये हुआ कि अर्जुन डिड नॉट मेक इट टू द कास्ट ऑफ मस्त। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मस्त मूवी राम गोपाल वर्मा के एक फेमस एक्ट्रेस से ऑब्सेशन पर बेस्ड है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद।

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मस्त मूवी में आफ्ताब का कैरेक्टर वाज ऑब्सेस्ड विद उर्मिला मातोंडकर का कैरेक्टर, सो मच सो दैट कि वो बंदी को देखने के लिए अपने शहर से मुंबई आ गया था। और जब मूवी रिलीज हुई थी तो हमें लगा था हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, बट गेस व्हाट, ऐसा होता है। ये हरकत इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये स्टोरी है राम गोपाल वर्मा की स्टोरी। और मस्त उन्होंने अपने इसी ऑब्सेशन को लेकर बनाई है। जब वो श्रीदेवी से इतने ऑब्सेस थे कि वो भी श्रीदेवी के घर के बाहर आस लगाए घंटों खड़े रहा करते थे। दो अनलाइक द मूवी की स्टोरी, उन्हें आफ्ताब के कैरेक्टर की तरह श्रीदेवी तो नहीं मिली, लेकिन शायद अपने दिल को वो खुशी देने के लिए जो जीवन में नहीं मिली, उन्होंने आफ्ताब और उर्मिला के कैरेक्टर्स की हैप्पी एंडिंग बताई दी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज हॉट।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विद्या बालन आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म फॉर?
3: ऑफ कोर्स कस्तो मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
2: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: करिश्मे तो बहुत देखे हैं हमने, लेकिन करिश्मा का करिश्मा देखने में एक अलग ही बात थी।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज का जमाना इंसानों के साथ साथ AI और रोबोट्स का भी जमाना है, लेकिन अर्ली 2000s was way ahead of its time, जब करिश्मा का करिश्मा शो में एक ऐसी स्टोरी लाइन आई वेर इन ह्यूमंस लिव विद अ रोबोट जो उनकी बेटी होती है। ऑफ कोर्स नॉट बायोलॉजिकल बट टेक्नोलॉजिकल। एंड वेल, ये शो इंस्पायर्ड था फ्रॉम एन 80s अमेरिकन सिटकॉम स्मॉल वंडर। एंड शो में करिश्मा का रोल प्ले करने वाली छोटी सी क्यूट सी जनक शुक्ला, माइंड यू, अब बड़ी हो गई है यार। उन्होंने एक्टिंग तो कब की छोड़ दी है, अब वो आर्कियोलॉजी पढ़ रही हैं। एंड आल्सो शी इज नाउ एंगेज्ड। कांग्रेचुलेशंस टू क्यूट जनक। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको इन तीन शोज में से कौन सा शो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था? करिश्मा का करिश्मा, सोन परी, या फिर शाकाला का बूम बूम? टफ चॉइसेस हाँ, लेकिन DM करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए अगला गाना आ रहा है, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Energy, burga.
1: Hello.
2: से बोल रहे
1: हैं? हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: हाँ, बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: Oh my God.
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम, प्रॉब्लम
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजूं?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे husband से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुची पुची कुची पुची. ओके स्वीटर बाय। हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
1: गोलगप्पे नहीं होते मैम हमारे यहाँ।
2: चकोर दे दीजिए, गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ।
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो।
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं।
1: क्या खाते मैम?
2: मुर्गा
1: मैम, वो भी नहीं है।
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए।
3: रेडियो मिर्ची। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: इत्तेफाक की बात है कि सपने मूवी मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन इसके सारे के सारे गाने मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है यार। हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म सपने दिल के बड़ा करीब है। ये गाना तो वो गाना है जिसने मेरे लिए काजोल को और ज्यादा फेवरेट बना दिया। और जब मुझे ये पता लगा कि इस गाने को गाने वाले इंसान का नाम ही मलेशिया है, जो कि बहुत रिसेंट बात भी नहीं है और बहुत पुरानी बात भी नहीं है, समवेयर बीच की बात है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार जब सिंगर का नाम ही मलेशिया है तो यार गाना तो खूबसूरत होना ही था ना यार।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, now अब टाइम हो चुका है मेरे यारा कि हम कर लें मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गानों को मिक्स करके उनकी धुने में आपके लिए चला दिया करती हूँ और आपको पहचानना है कि ये 90s या अर्ली 2000 का कौन सा ऐसा गाना है जो आपके लिए चलाया गया है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं।

बस जी डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो और स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: यार उत्तम सिंह ने दिल तो पागल है की म्यूजिक कंपोज करने के लिए 2 साल लिए, उसमें भी धुन खुद की बनाने के बजाय कॉपी किए।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग।
3: अरे भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए आए हाय,
1: इज एक्चुअली कॉपीड फ्रॉम अ नेपाली सॉन्ग।
3: जाओ नह ले ले त्यो डाड़ा पारी माया बोकेरा, जाओ नह ले ले त्यो डाड़ा पारी माया बोकेरा।
1: और मजे की बात तो पता है ये है कि ये दोनों ही गाने उदित नारायण जी ने गाए हैं। अब समझ आ रहा है कि इस म्यूजिकल इंस्पिरेशन की इंस्पिरेशन किसने दी है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है शाहिद कपूर. बट शाहिद इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था वो.
3: मेरा पहला गाना था इट वॉज इन इश्क इश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू Impress the women.
2: Shahid, what a lovely dive in nostalgia. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: क्या आपको लगता है इग्नोरेंस इज ब्लिस? सारा जमाना
1: है सारा का दीवाना। मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हम जैसे जैसे बड़े होते गए ना, जैसे जैसे चीजें हमारे आगे अनफोल्ड होती गई हैं, वैसे वैसे हम समझदार होते गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कि हर एक चीज पता होनी भी क्या ही जरूरी है। कुछ चीजों की सच्चाई जब नहीं पता होती ना, तो एक होप जरूर होती है। मैं आपसे अपने बचपन की एक बात शेयर करती हूँ। बचपन में माई फादर यूज टू टेल मी अबाउट अ फेरी गॉड मदर हु ऑफ कोर्स डिड नॉट एग्जिस्ट। लेकिन गुड, ये बात मुझे नहीं पता थी, क्योंकि जब मुझे ये पता था कि आई हैव अ फेरी गॉड मदर, आई यूज टू फील वेरी सिक्योर्ड, वेरी प्रोटेक्टेड। और मेरे डैडी वो रात में ना मुझे फेरी गॉड मदर के नाम पर दूध पिला दिया करते थे, सोने से पहले चेंज करके ब्रश करके सोने की आदत दिला दिया करते थे, और अक्सर सुबह मुझे मेरे तकिए के नीचे कभी गिफ्ट्स तो कभी चॉकलेट्स मिला करती थी। थैंक्स टू फेरी गॉड मदर, यू नो आई स्टिल वुड वांट टू बिलीव इन अ फेरी गॉड मदर। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए ना, हेंस इग्नोरेंस इज ब्लिस जो कहते हैं ना, सही कहते हैं। लेकिन आज भी ना इस बड़ी सी दुनिया में अपनी छोटी सी दुनिया बनाकर ना हम भी खुश रह सकते हैं, जहाँ जरूरी नहीं कि हर बात को सीरियसली लिया जाए और हर चीज का पर्दा फाश किया जाए। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, और ये गाना भी वही कहता है कि कुछ ऐसा जहाँ हम बनाए। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virva la burka.
1: Mirci, burka. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव, आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर,
2: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंट चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बनकर कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड कर.
3: बकवास बनकर
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV ke antenna.
2: यादों को चिट्ठी।
1: हालांकि आजकल हमारे घरों के अंदर स्मार्ट टीवीज, वाईफाई, सेट टॉप बॉक्सेस इन सब की भरमार है, लेकिन फिर भी इन सारी सहूलियतों की भीड़ में तुम्हारी याद कहीं ना कहीं से निकलकर आ ही जाती है। रियलाइज होता है कि आज जो इतने आसानी से बैठ के हम टीवी देख रहे होते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, विदाउट एनी इंटरप्शन, एक जमाने में हम परेशान हो जाया करते थे अगर गलती से कुछ चंद बूंदे भी पड़ जाया करती थी या हवा तेज हो जाया करती थी। दिल में एक ही डर होता था कि ओ नो, अभी तो वो पिक्चर शुरू होने वाली है जिसका कि हमने पूरे हफ्ते इंतजार किया है, वो DD1 पर आएगी, हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले ही आंधी तूफान के आसार कैसे आ गए, अब एंटीना हिलेगा, सिग्नल डुलेगा और हमारे प्लान पे रायता ढुलेगा। और जब बारिश आया करती थी ना, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम तुम्हारे ऊपर पन्नी चढ़ा दिया करते थे। आई डोंट नो इफ इट एवर मेड सेंस और नॉट, बट हाँ, दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल अच्छा हुआ करता था गालिब। कभी तुम टी शेप में आते थे तो कहीं तुम गोल वाले शेप में आते थे, और इनफैक्ट जब तुम गोल वाले शेप में आए तो मुझे लगा ओहो, ये तो कुछ प्रीमियम टाइप का है जो हमारे यहाँ पे लगा है, क्योंकि सबके यहाँ तो टी शेप में है, हमारे यहाँ गोल वाले शेप में है। अक्सर ऐसा भी हुआ करता था कि छतों की सफाइयाँ होती थी तो पुराने एंटीने जो टूटे फूटे या तो उड़ के कहीं और से आए होते थे या हमारे ही घर के जो कभी टूट गए होते थे और रिप्लेस हो चुके होते थे नए वालों से, वो छतों की गंदगी के अंदर निकल निकल के आया करते थे। तुम भी क्या कमाल की चीज थे यार, बस एक बार छत पर टंग जाया करते थे तो ना जाने क्या क्या कैच करके हमारे टीवी पर दिखा दिया करते थे। तुम्हारी टेक्नोलॉजी मैं आज तक तो नहीं समझी थी, मगर हाँ, हमने तुम्हारी टेक्नोलॉजी का इंसान के साथ बड़ा इस्तेमाल किया है। नीचे से एक जना आवाज दिया करता था कि हाँ हाँ हाँ, आया आया आया, नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, और ऊपर बैठा एक इंसान ये मैसेज लिया करता था जो कि तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा होता था कि किस तरफ तुम्हें घुमाए, किस दिशा में तुम्हें लाए कि हमारा जो नेटवर्क है टीवी का वो आ जाए किसी तरीके से, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं और फिर फाइनली एकदम बढ़िया होकर स्क्रीन हो जाती थी हमारी एकदम ढाई। तुम्हारे सहारे हमने महाभारत, शक्तिमान, चित्रहार, फ्राइडे की फिल्में, सैटरडे की फिल्में, ये सब बिना हिले डुले देखी हैं। आज जब एक रिमोट से सैकड़ों चैनल्स बदल जाते हैं ना, तब तुम्हारी वो सादगी और तुम्हारा वो चैलेंज बड़ा याद आता है। तुम्हारे बिना तो टीवी देखना अधूरा सा लगता था। अब तो ना छत पर वो दौड़ भाग रह गई है और ना ही वो पिक्चर आ गई की खुशी रह गई है। वो एक्साइटमेंट ही अलग हुआ करता था यार, जब एक पिक्चर देखने के लिए इतनी मेहनत और हार्ट ब्रेक से डील करना पड़ता था। आज तो सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है और शायद इसी वजह से आज उसकी इतनी अहमियत भी नहीं है। तुम सिर्फ हमें टीवी नहीं दिखाया करते थे और ना ही सिर्फ हमारे नेटवर्क और सिग्नल्स को टीवी से जोड़कर रखते थे, तुम तो हमारी पूरी फैमिली को जोड़े रखते थे। और सिर्फ फैमिली ही क्यों, पड़ोसियों को भी हमसे जोड़े रखते थे जो हमारे घर पर टीवी देखने के लिए आया करते थे। तुम्हें याद करती हुई तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में यस बॉस से ये जो गाना है ना, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये हम सभी की लाइफ का सच है बॉस। कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: एक दिन आप यू हमको मिल जाएंगे। भले कहावत है, कहते हैं कि लव फाइंड्स यू व्हेन यू नॉट सर्चिंग फॉर इट, यानी कि आपको जब लग रहा होता है ना कि यार अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मतलब प्यार व्यार में मुझे नहीं पड़ना यार, मुझसे ना हो पाएगा, हमसे होता ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है, ठीक उसी वक्त आपको प्यार ढूंढ ही लेता है। आप नहीं ढूंढते हो, प्यार खुद आपको ढूंढ लेता है, खुद चल के आपके पास आ जाता है। और यही इस गाने का भी फील है, जहाँ पर इंसान जो है वो ये सोच रहा होता है कि यार एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था, प्यार भी कुछ ऐसी ही चीज होती है और इतनी खूबसूरत चीज होती है, क्योंकि हम जब सोच रहे होते हैं ना कि यार प्यार व्यार नहीं हो सकता यार, बहुत दिल तोड़वा लिए यार, अब मेरी हिम्मत नहीं है, बस उसी वक्त आपको वो इंसान मिल जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, या यूं कहें कि सोचा होगा लेकिन ये भी सोचा होगा कि यार ऐसे इंसान तो होते ही नहीं है। लेकिन सच बात बताओ, ऐसे इंसान होते हैं भाई, सबकी किस्मत में एक बढ़िया इंसान लिखा हुआ है। और तभी ये लाइन आती है कि एक दिन जिंदगी होगी इतनी हसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन, और आप खुद से ही कहोगे कि मैंने सोचा ना था। दुआ करती हूँ कि आपकी जिंदगी में ये पल जल्द ही आए, अगर अभी तक आया नहीं है तो। और इसी के साथ इस दुआ को कबूल फरमाए और इस गाने पर जाएं, यानी कि ये गाना अब आपके लिए मैं लगाते हुए जा रही हूँ। और आपसे कहती हूँ हम हराई प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
3: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
2: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Virgin Helpline?
1: Yeah. Hi there, what's up? Tell me.
0: Sir, computer में virus घुस गया है, क्या करूं?
1: Oh my God, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: इस गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शबीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: हेलो
2: हेलो नवनीत
1: yeah.
2: नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
1: हाय नवेद,
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
2: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
2: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
1: हाँ?
2: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
1: या, मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
2: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
1: मिस्टर दिलीप।
2: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
1: मैं क्या कुछ गलत
2: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार?
1: अब ऐसी बात क्या
2: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: अब मैं क्या
2: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
2: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो तरफ से मैं माफी
2: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरे तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
1: नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
2: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
1: कुकड़ुकू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: अमृतसरी चिड़िया गल्ला गुड़िया गाना सुना के आ गया आपके बीच, जिसका नाम है मस्त मौला गौरव। लेकिन फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम फिलहाल हो दोपहर के नहीं बल्कि शाम के 4:12 हो रहे हैं, हालांकि गर्मी की वजह से शायद दोपहर लग रही है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: मस्त मौला गौरव आपके साथ। वर्ल्ड कप के लिए पूरी दुनिया में तैयारियां चल रही हैं, सारी जगह सब कुछ अच्छा हो यही हम दुआ कर रहे हैं। इन सब के बीच मस्त मौला गौरव आपको बताना चाहता है कि इस बार अलग अलग टीमें क्लेम कर रही हैं। कोई कह रहा है स्पेन जो है जबरदस्त खेल रही है, कोई कहता है नहीं मेसी की टीम अर्जेंटीना के पास भी वो दमखम है कि वो अपना ये वर्ल्ड कप बचा लेगी। वही ब्राजील अपना छठवां क्राउन देख रहा है, क्या होगा क्या नहीं है तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज जो होगी वो ये कि अब पूरी दुनिया पर फुटबॉल का जादू चढ़ने वाला है, वो बुखार वो फीवर ऑफ फुटबॉल एक बार फिर से वापस आने वाला है। इन सब के बीच गर्मी का फीवर हमारे कदर पे भी धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है, पारा ऊपर जा रहा है, लेकिन पानी पी पी के इस गर्मी को कोसते रहो कि जल्दी से फिर ठंडी आए। फिलहाल अगले 4 महीने थोड़े कठिन रहेंगे दोस्तों। इन सब के बीच हम आपके पास बहुत सारी बातों का जखीरा लेके आ गए हैं, बस हमारे साथ कान लगाई लो, वॉल्यूम बढ़ाई लो। मिर्ची पर आ गया मस्त मौला गौरव लेके शाम शानदार। अगला गाना योहानी की आवाज में श्रीलंका से लेकर इंडिया तक कैसे हिट हुई यही गाने की वजह से।

नादानिया। अक्षत की आवाज में ये गाना किसने सुना दिया? लेकिन हम आपको बता दें कि मिलियंस ऑफ फुटबॉल फैंस जो पूरी दुनिया में है, करोड़ों की संख्या में ना, उनके लिए फीफा वर्ल्ड कप मैच देखना एक ड्रीम होता है। लेकिन एक लकी सपोर्टर अब अपनी इस ड्रीम का पेड जॉब पाएगा। यस, कुछ चैनल्स हैं जो दुनिया में एकदम अनूठा काम करने जा रहे हैं। यस, एक ऐसा रोल जहां पर अगर आप हर मैच देखते हैं, ये कंपनी आपको हायर करती है। और जब आप फीफा का हर मैच देखते हैं, इसके बाद अगर आप ये 104 मैचेस का टारगेट पूरा करते हैं, जो कि अब तक का लार्जेस्ट फीफा वर्ल्ड कप है अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो आपको मिलेगा $50,000। ये अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन अब आपको सुनाई देंगे, जहां पर एवरी फीफा वर्ल्ड कप मैच देखने के साथ आप 50,000 की ड्रीम जॉब भी पाएंगे। ये फुटबॉल फैंस को दिया है एक न्यूज चैनल ने और मौका। अब इसके अलावा और क्या होने वाला है दुनिया में, और कौन कौन सी नई अनाउंसमेंट होगी, इस बार के स्टाइल स्टेटमेंट क्या बनेंगे, वेयर इज मेसी, या फिर मेट्रो दिस वे, कुछ ऐसी बातें जो शायद हमने वर्ल्ड कप से ली और आज तक हमारे जहन में जिंदा है। वो इसीलिए क्योंकि कतर में सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल नहीं हुआ, ये सिर्फ एक गेम नहीं था, यहाँ इमोशन का एक ऐसा यादगार पिटारा बना कि लोगों को एक एक पल याद है, सूख वाकिफ से लेकर सूख फकरा तक, या फिर यूं कहें फैन जोन से लेकर कॉर्निश की स्ट्रीट तक, हर कुछ सिर्फ फुटबॉल के रंग में रंगा था और वो इमोशन हमें मरते दम तक याद रहेगा। वन ऑफ द लकी मैन जो कि सेमीफाइनल मैच में फ्रांस वर्सेस मोरक्को के बीच में स्टेडियम में था, वो एक अलग ही मजा था दोस्त। काश वो मौका फिर कभी जिंदगी में आए और हम ये सब कुछ देख पाए। 89.6 मिर्ची 1 कल से शुरू होने जा रहा है ये पूरा मंथ मिर्ची था।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सच बोले कतर में ये गाना ना वो सारे होम रेंट पे रहे लोग रहे गाते हैं अपनी नैनीज के लिए जिनकी नैनीज उनको छोड़ के चली जाती कि मुझे छोड़ के जो तुम जाओगी बड़ा पछताओगी क्योंकि यहाँ ये नैनीज बड़ी मुश्किल से मिलती है भैया। खैर चलिए जो आया है वो तो छोड़ के जाएगा ही लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों, बस ट्रस्ट रखिए सब कुछ अच्छा ही रहेगा। इन सब के बीच हमारे कतर में अगर आप किसी सड़क पे चल रहे हैं रोज के मुकाबले आपको लग रहा है कि उस रोड पर ट्रैफिक स्मूथ हो गया है काफी अच्छा हो गया है तो उसके पीछे जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक के कुछ बड़े ऑफिशियल्स हैं। यस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिप्रेजेंट करते हुए जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने पार्टिसिपेट किया सेंट्रल म्युनिसिपल काउंसिल मीटिंग में जो कि ट्रैफिक प्लान्स को डिस्कस करने के लिए थी और वो मेजर के लिए थी जहां पर कैसे कतर की सड़कों पर ट्रैफिक फ्लो स्मूथ हो और कंजेशन कम से कम हो। इसके लिए बकायदा जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने रिप्रेजेंट किया एट द मीटिंग बाय ब्रिगेडियर जाबर अली अलकुबेसी। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक कर्नल मोहम्मद बिन जैसिम अल थानी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एंड कुछ और डिपार्टमेंट के बड़े लोग एक साथ इकट्ठा हुए और एफर्ट्स के बारे में बातें हुई, कौन से मेजर्स आगे भी लिए जाएंगे इसके बारे में बातें हुई। और आज हम भी ऑफिस से निकलते टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभी अलनासर स्ट्रीट पर जब हम अपना वो हाईवे छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंजेशन मिलता है, ये कैसे कम हो सकता है। लेकिन देखिए हमसे ज्यादा सोचने वाले लोगों ने ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया एंड आने वाले टाइम में आपको कतर की सड़कों पर और ट्रैफिक स्मूथ फ्लो दिखाई देगा। तो ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे के लिए एफर्ट किया है, जोरदार ताली। और कतर की हुकूमत को सलाम जो समय समय पर हम पब्लिक के लिए कैसे और अच्छा हो एक्सपीरियंस कतर का रहने का वो एंश्योर करते रहते हैं। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
1: उससे भी ज्यादा।
0: लॉटरी लग गई?
1: उससे भी बड़ा।
0: तो फिर बताओ।
1: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
2: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
3: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
4: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
5: बहुत कुछ होगा।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: और रहनुमा गाना सुना दिया खुद श्रेया घोषाल अरमान मलिक ने। बताइए हमारे लिए आते हैं यहाँ गाना गाते हैं और हम ये हैं कि ताली में जाते। हाँ जी, मतलब आर्टिस्ट के लिए ना तालियां ऑक्सीजन का काम करती है दोस्तों। जब भी कोई गाना अच्छा सुनिए, अगर ड्राइव नहीं करें तो कम से कम ताली बजा दिया करिए। फिलहाल इन सब के बीच मौसम ताली नहीं, हमारी असली परीक्षा ले रहा है। गजब की गर्मी हो रही भाई साहब।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। फिलहाल तो सिर्फ सलमान नहीं, संजू बाबा वाला भी जो टशन है, गर्मी है, वो आ गई है मौसम में। हाँ जी, 46 डिग्री सेल्सियस दिन का मैक्सिमम तापमान और दिन का मिनिमम अराउंड 33 जा रहा है। कुल मिलाकर धीरे धीरे ह्यूमिडिटी का पारा चढ़ रहा है, जो अब तक 15-16 था वो आज 26 पहुंचा है। विंड स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आने वाले टाइम में गर्मी के और बढ़ने के चांसेस हैं। तो बस पानी पीने का बहाना ढूंढते रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, एंड एंटरटेनमेंट के लिए तो मिर्ची है ही है। अब जैसे अगला गाना नैनो वाले ने, आहा मिर्ची छोड़।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
3: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरीचा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
2: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
1: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: महमूद, राघव चैतन्य, रुआ के की आवाज में ये गाना आपके कानों में किसने पहुंचाया? मिर्ची का माशू। फिलहाल के लिए आपके साथ हूँ और घड़ी की सुई 5:05 का इशारा कर रही हूँ।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: देवी और सज्जनों, आप जानते हैं जब बज जाते हैं शाम के 5 तो हम खेलते हैं और पहचान कौन में आज की आवाज आपको पहचाननी है, ये किस एक्टर की आवाज है।
3: मुझे एक मौका मिला इनके साथ काम करना एंड मैं श्रद्धा के बारे में ये कहना चाहूंगा कि इतने सारे बड़े ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी शी सच अ सिंपल लड़की है, इतनी हार्ड वर्किंग मेहनती है।
1: इतनी हार्ड वर्किंग मेहनती है, श्रद्धा के बारे में ये बातें कौन सा एक्टर कर रहा है? 5000 1896 5000 1896 पर ये आवाज किसकी आपको बताना है।
3: मुझे एक मौका मिला इनके साथ काम करना एंड मैं श्रद्धा के बारे में ये कहना चाहूंगा कि इतने सारे बड़े ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी शी सच अ सिंपल लड़की है, इतनी हार्ड वर्किंग मेहनती है।
1: इतनी हार्ड वर्किंग मेहनती है, कौन तारीफ कर रहा है श्रद्धा की और ये कौन सी श्रद्धा है? 5000 1896 पर बताइए कौन सा एक्टर है जिसकी आवाज आपके कानों में मैंने अभी अभी पहुंचाई है एंड अगर आपने पकड़ लिया है तो किस बात का इंतजार करें। 5000 1896 पर गौरव, ये है फला एक्टर, ढिमकाना एक्टर, जो भी आपको पता है बताइए ना।
3: मुझे एक मौका मिला इनके साथ काम करना एंड मैं श्रद्धा के बारे में ये कहना चाहूंगा कि इतने सारे बड़े ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी शी सच अ सिंपल लड़की है, इतनी हार्ड वर्किंग मेहनती है।
1: तो भाई हमें लग रहा है कि आपने पकड़ लिया है, जवाब आने शुरू हो गए, तो हम अगली बार जवाब के साथ लौटेंगे लेकिन फिलहाल के लिए मौका आपको दे जा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। हबीबी, फकर एंड टेल मी हु इज दिस गाय। हाँ जी, अरबी में फकर मतलब होता है कि आप सोचिए उस बारे में। मिर्ची थॉट।

0: Milci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La vizba la burga.
1: Milci, burga. Aga. Hello?
2: Hello, Sunil ji.
1: Haan ji.
2: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं.
1: किस चीज के जी सर?
2: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
1: वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया.
2: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
1: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
2: हाँ जी.
1: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
2: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
1: कंडीशन वगैरह?
2: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक हैं आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
1: तो ठीक है, पुराने ग्राहक कोई आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते ना अपने कोई ज्यादा.
2: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
1: क्या?
2: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
1: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
2: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला.
1: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
2: सर पुराना जो आपने
1: पुराना वो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
2: तो सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
1: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
2: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
1: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
2: अरे अरे तो ये क्या
1: पुराना कहाँ से लाऊं?
2: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
1: पेट्रोल फालतू का. अच्छा. पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ.
3: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

0: मारूफ ये गहराइयां लौटिका के आवाज में गाना आपके कानों तक किसने पहुंचाया? लेकिन इस घंटे एक कॉन्टेस्ट हम आपके कानों में पहुंचाते हैं और वो कॉन्टेस्ट है और हम पहचान कौन में एक आवाज आपके कानों में लगाते हैं और पूछते हैं बताओ किसकी आवाज है, आज का एक्टर कौन है?
1: मुझे एक मौका मिला इनके साथ काम करना एंड मैं श्रद्धा के बारे में ये कहना चाहूंगा कि इतने सारे बड़े ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी शी सच अ सिंपल लड़की है, इतनी हार्ड वर्किंग, मेहनती है।
0: एंड हिंट में आज मैं बस इतना कहूंगा, मेरा बच्चा है तू। 5000196 पर ये लाइन है, सीरो से रिलेट करती है, मेरा बच्चा है तू। एक बार फिर से ध्यान से सुन,
1: मुझे एक मौका मिला इनके साथ काम करना एंड मैं श्रद्धा के बारे में ये कहना चाहूंगा कि इतने सारे बड़े ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी शी सच अ सिंपल लड़की है, इतनी हार्ड वर्किंग, मेहनती है।
0: 5000196 पर गौरव आपके इंतजार में, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया लेकिन हम और कुछ को मौका देना चाहते हैं। 5000196 पर जल्दी जल्दी अपना जवाब भेजिए कि ये एक्टर है कौन सा, वॉइस नोट करिएगा मिर्ची थॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: आड़ी संदूर स्वस्ति महल के आवाज में गाना यस मैंने नहीं गाया बल्कि इन्होंने गाया इसीलिए उनका नाम बताया, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे साथ खेल रहे हैं आप। एक आवाज जो जाएगी बताइए कौन सा एक्टर है।
1: मुझे एक मौका मिला इनके साथ काम करना एंड मैं श्रद्धा के बारे में ये कहना चाहूंगा कि इतने सारे बड़े ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी शी सच अ सिंपल लड़की है, इतनी हार्ड वर्किंग मेहनती है।
0: और देखिए जवाब आ गए भारी संख्या बल के साथ।
2: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू? यूसुफ हियर। ये आवाज है टाइगर श्रॉफ की और ये फिल्म बागी की बात कर रहे हैं। ओके थैंक यू, बाय बाय।
0: थैंक यू
3: टाइगर श्रॉफ।
4: हाय गौरव जी, आस्मा हियर, आंसर इज टाइगर श्रॉफ।
0: ओके
5: हाय, दिस इज भूमिका ध्रुव, दिस इज द वॉइस ऑफ टाइगर श्रॉफ।
6: हाय मिस्टर गौरव, ये आवाज है टाइगर श्रॉफ की।
0: 100% करेक्ट आंसर आया भैया। ये तो बोलने वालों का जितना मैसेज रिकॉर्ड करके मैं सुना पा रहा हूँ, इसके अलावा लिख के बहुत सारे लोगों ने भेजा है, नाम का बड़ा संख्या बन है। लेकिन यार टाइगर श्रॉफ की आवाज लोग इतनी जल्दी पहचान गए, या मैंने लगता है श्रद्धा वाला जो हिंट दे दिया उसकी वजह से हो पाया। यस बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, सोहेल भाई, शुभम, मोहिद्दीन, एड्रियन, शारिक जिन्होंने लिखा है श्रद्धा एंड टाइगर की बात हो रही है, वेल आमिर भाई जिन्होंने लिखा है टाइगर की बात हो रही है, यहीं पर एक और नाम है बल्ली, बल्ली जिन्होंने लिखा है टाइगर, केतन भाई ने लिखा है टाइगर, धीरज ने बोला टाइगर, मोनिका ने बोला टाइगर, मतलब कुल मिलाकर टाइगर श्रॉफ आपकी आवाज तो बड़ी पॉपुलर है भाई। यस यही सही जवाब था। अब अगले घंटे गानों की मिक्सी चलेगी, दो गानों को एक साथ लाएंगे, आपको पकड़ना है कौन सा गाना है। मिर्ची इट्स

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विद्या बालन आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
3: ऑफ कोर्स कस्तू मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
2: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गुरु रंधावा की आवाज में नखरा तेरा नहीं, ये गाना सुनाया किसने जानी। फिलहाल के लिए आपके साथ हूँ तो बहुत सारी बातें सुनाता हूँ, लेकिन जब एक बात सुनाने पे आता हूँ तो बस ऐसा लगता है यार काश कोई दोस्त होता जो थोड़ा उधार देके भूल जाता, रेट्स अच्छे मिलने। राइट नाउ की बात करें, एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाली भारतीय मुद्रा 26 रुपए 14 पैसे है, यस 26.14 INR। कोई वन कतरी रियाल के बदले अगर हम श्रीलंकन रुपीज की बात करें 90.87, यस 90.87 श्रीलंकन रुपीज। कोई वन कतरी रियाल के बदले पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.73 पाकिस्तान रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट चल रहा जो एक कतरी रियाल के बदले 41.79 का भाव चल रेट रहा है। हाँ जी 41.79 का रेट छो बहनी, अगर घर भेजना तो राइट टाइम छो पैसे का। अगर हम इसके बाद बात करें तो बंधु बांग्लादेशी टका दादा एकटा कतरी रियाल के बदले 33.75 तो 33.75 आइटा बांग्लादेशी टका का रेट है। मस्त मोन गौरव के साथ एंजॉय कर चिलम, हाँ मिर्ची सुनते रहो, हॉट अच्छे तो।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

0: हम लोग भी जरा हावी भी शरारत सीखते हैं। क्या सिखाती वैसे आपके शरारत के कोर्स में है क्या क्या? लेकिन मैं बता दूं, हम लोग शरारत तो माँ के पेट से सीख क्या है। मस्त बोला गौरव नाम है फिलहाल मिर्ची घड़ी में। टाइम शाम के 6:07 का।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: अरे इसलिए कह रहे हैं शरारत मम्मी से सीख, मतलब पेट से सीख क्या है, क्योंकि जब हम पैदा ही हुए तो पापा कहते बहुत शरारती बच्चा, देखो कैसे लात मारा है दूध पीने के लिए, धन धन धन धन। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के हर मोड़ पर एक शरारत हमेशा अपने अंदर जिंदगी में बनाए रखेगा, वही आपके बचपने से आपको कनेक्ट रखती है। फिलहाल तो हमने आपको कनेक्ट कर दिया है इस घंटे उस मिक्सर ग्राइंडर में जहाँ दो गानों की मिक्सी चलती है।
1: गानों की मिक्सी।
0: और आज के दो गाने कौन से हैं जरा पहचानिए इस मिक्सर ग्राइंडर में। हाँ जी, ये दो गानों की मिक्सी चल गई है और इस मिक्सर ग्राइंडर में दो गाने पिस गए। फिर से सुनिए। ये नंबर है जिस पे आप बता सकते हैं कि हमारा गौरव ये जो दो गाने तुमने मिक्सी में डाले वो ये वाले गाने हैं। जितनी जल्दी हो सके वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिएगा। तब तक अदनान सामी जी लिपस्टिक लेके आए, चलिए जिनको जिनको मेकअप करना लगा लीजिए। हबीबी मिर्ची हॉट है।

0: पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस, iPay वॉलेट का भरोसा, डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Alfahad Optics. Clear vision, stylish fashion. All at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Ghoot Insurance. Visit Alfahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: Restaurant partner Chaska Restaurant. Chinese, Mumbai ho ya North Indian ka craze. Budget mein chahiye tasty dish? To chaliye Chaska Restaurant. Jo hai Esdan Oasis mein. Swad bhi zabardast aur price bhi mast.
1: Mall partner Abu Sidra Mall. Shopping, dining and everything in between. Abu Sidra Mall has it all. Abu Sidra Mall for every day and every occasion.
2: Hygiene partner Hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with Hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
5: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना मिल्क लबान योगर्ट. एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतार लव्स. रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून.
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.

0: हाँ जी, नैन मटक्का तो चल रहा है लेकिन मस्त मौला गौरव के साथ मेरा शो भी चल रहा है। यस, और यहाँ पर हम चलाते हैं गानों की एक मिक्सी।
1: गानों की मिक्सी।
0: और इस गाने की मिक्सी में दो गाने हम पीस देते हैं और आपको पकड़ना होता है कि ये कौन सा गाना है। आज के गाने सुनिए। फाइव ट्रिपल जीरो 1896 एक नंबर है जिसपे आप कॉल कर अपना जवाब दे सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। जबरदस्त दो सिंगर्स की ये जोड़ी है, अपने अपने फील्ड के हर फन मौला है। एक बार फिर से ध्यान से सुन के बताइए कौन से हैं ये दो गाने। फाइव ट्रिपल जीरो 1896 पर मस्त मौला गौरव आपका इंतजार कर रहा है। जितनी जल्दी हो सके अपने जवाब भेजिए और अब से थोड़ी देर बाद जब मगरिब की अजान पूरी होगी उसके थोड़ी देर बाद लौटेंगे और सही जवाब हम आपको बताएंगे। तब तक मिर्ची सुनते रहिए जनाब।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी।
3: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
2: या
3: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
2: बोलिए।
3: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
2: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 केजी होती है।
3: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
2: ओह माय गॉड,
3: मेरे हस्बैंड हैं डाइट उनकी, आपको क्या प्रॉब्लम है?
2: नहीं मैम प्रॉब्लम।
3: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
2: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेज दूँ?
3: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
2: सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ 5 केजी एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
3: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ।

0: बात करने वाला ये साइको प्रेमी लगता है मुझे। लेकिन मैं हूँ आपके लिए एंटरटेनमेंट का प्रेमी, लेकर आता हूँ इस घंटे वो खेल जिसका नाम है
1: गानों की मिक्सी।
0: और गानों की मिक्सी में आज दो गाने ये थे। बस बस बस यही खत्म कर दो। और ये दो गाने कौन से हैं बताने के लिए दो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लोगों के जवाब भी सुनने दोगे?
2: नो, गुड इवनिंग, माय नेम इज विनेश कुमार एंड द आंसर इज वन सॉन्ग इज फ्रॉम बैंड बाजा बारात एंड द सेकंड सॉन्ग इज आशिक बनाया रिमिक्स वन।
3: गुड इवनिंग गौरव।
0: हां जी,
3: यूसुफ हियर अगेन। वो दो गाने हैं आशिक बनाया आपने और सेकंड सॉन्ग है आई वी हो गया। थैंक यू।
0: लूट गया, बिल्कुल सही जवाब है। गाने की मिक्सी के दोनों इंग्रेडिएंट्स इन दो बंदों ने सही सही पकड़े हैं और इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और गानों की मिक्सी में अगर कोई गाना बजे तो जब गाना बन के तैयार है तो क्यों ना यहाँ बजे मिर्ची पर अगला गाना गानों की मिक्सी से।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
6: उससे भी ज्यादा।
5: लॉटरी लग गई?
6: उससे भी बड़ा।
5: तो फिर बताओ।
6: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
4: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद।

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची वन पर ये गाना डेस्पेराडो खत्म हुआ और सुनाया किसने? और आपके साथ हूँ तो बस इतना ही कहता हूँ, खेल जगत से बहुत सारी बातें आपके कानों तक हम पहुँचाते,
1: क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, सबका अपडेट बताएगा रे तिरम मिर्ची।
0: स्पोर्ट्स अपडेट में सबसे पहले भारत 9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगा। यस, 15 अगस्त से गोल में फर्स्ट टेस्ट शुरू हो जा रहा है और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा भी होने वाली है सीरीज। कुल मिलाकर इंडिया के पास मौका है, हम अवे सीरीज में अगर जीतते हैं तो माहौल बना सकते हैं। इन सबके बीच हम आपको ये बता दें कि पूरी दुनिया तैयारी कर रही है एशियन गेम्स के लिए। यस, क्योंकि एशिया से जो गेमिंग पावर आता है वो एशियन गेम्स से ही आता है और इसमें इंडियन टीम के अलावा पाकिस्तान ने फिलहाल अपनी 15 मेंबर्स की टीम कर दिए और साहिबजादा फरहान को एक बार फिर से कप्तान बनाया गया। तो यानी कि अब एक तरफ जहां फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी में दुनिया फुटबॉल के लिए तैयारी कर रही है, एशियन गेम्स में अपना झंडा गाड़ने के लिए लोग क्रिकेट के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। वैसे क्रिकेट से अगर हम फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरफ बढ़े तो कतर बिल्कुल तैयार है और अलनाबी के फैंस धीरे धीरे अब मेक्सिको, कनाडा और यूएसए पहुंच रहे हैं। एंड कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूं कि जितने भी वहां के होस्ट सिटीज हैं सब तैयार हैं और दुनिया भर के मिलियन फैंस जो ये वर्ल्ड कप देखने जाएंगे वो भी तैयार हैं। कुल मिलाकर 11 यूएस सिटीज इस बार फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगी। एंड फीफा वर्ल्ड कप जब भी नाम सामने आता है हमारे सामने 2022 बिल्कुल से एकदम रिवाइंड हो जाता है। वेल, उम्मीद है ये एडिशन अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है, मजा बहुत आने वाला है। ऑल द बेस्ट टू टीम अलनाबी, कम ऑन कतर, यल्ला गोल पे गोल चाहिए और इस बार परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त। मिर्ची थॉट

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है, और वो कौन है? शाहिद कपूर. बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
2: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क इश्क, ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू Impress the women.
1: Shahid, what a lovely dive in nostalgia. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं?
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: गाने का नाम बैरन और गाया बंजारे भाइयों ने। यस, और जब मस्त मौला गौरव आपके साथ होता है तो घड़ी की तरफ देखने देता है, खुद ही बता देता है शाम के 7:04 हो गए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: अब देखिए बड़ी बात यह है कि कतर धीरे धीरे अपने उड़ान को और बढ़ता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। कतर एयरवेज की बात कर रहा हूं, जो अपनी डेली फ्लाइट रिज्यूम करने जा रहे हैं फॉर फिलाडेल्फिया, और इसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है 1st August 2026। यस, हम बता दें ये रिजम्पशन है डेली फ्लाइट का, जो कि जाएगी फिलाडेल्फिया के लिए, और दोहा से डायरेक्ट फिलाडेल्फिया के लिए जब ये उड़ेगी तो ये नॉर्थ अमेरिकन नेटवर्क को 14 डेस्टिनेशन से जोड़ देगी। बड़ी बात यह है कि कतर में एयर स्पेस धीरे धीरे बड़ा और सुरक्षित हो रहा है, और उसी से अब धीरे धीरे फ्लाइट्स भी आगे बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि सब कुछ अच्छा है, एंड यहां कतर में जो मेक्सिकन एम्बेसडर टू कतर है एक्सीलेंसी जोश गुलमेरो ओद्रेको, हाँ जी रोबल साहब, उन्होंने क्लियर किया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 बेहतरीन होने वाला है, एंड हम पहले देश है मेक्सिको जहां पर तीसरी बार ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, और कतर का साथ है तो मुझे उम्मीद है ये और खूबसूरत होगा। वेल, इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया अब फुटबॉल के फीवर में डूबने जा रही है, एंड ऐसे में हमें और आपको भी अपनी अल्लाह ना भी बोले तो जिस देश में हम रहते हैं, जहां के रेसिडेंट है, उसे सपोर्ट करना है, और मैच भले ही आधी रात को आए, आंखों को मल मल के पूरा मैच देख के अपनी टीम को चीयर करना है, क्योंकि हमारे और आपके ही दुआओं से ये जीत इस बार पक्की होगी। 89.6 मिर्ची वन पर मस्मौला गौरव आखिरी घंटे की तरफ आगे बढ़ता हुआ मिर्ची इट्स हॉट। चलिए वेदांग रहना, नीलांजना, आप लोग मिलके जरा मस्कर लगाएं।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Burca, burca. La virpa la burca. Mirchi, burca.
2: Hello.
3: Is that Sanjeev?
2: Yeah, I'm speaking.
3: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
2: Okay.
3: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
2: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
3: ओके.
2: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
3: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
2: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
4: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
2: सॉरी सर.
3: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
2: कस्टमर्स आए हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
4: बकवास बनकर कूलली तू करता था. कूलली दांत अंदर कर.
2: हम करते थे सेटिस्फाइड
4: कर. बकवास बनकर
2: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
3: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
2: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
4: शराब
2: बोलते हैं.
4: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका. कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
2: अभी तक
4: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
2: बोल
4: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार. इंसान बना नहीं है.
2: खुद को देखा आपने कभी?
3: संजीव, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. okay. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

कतर वर्ल्ड कप का वो मैस्कॉट लाइव याद है ना? अरे भूल भी कैसे सकते हैं उस खूबसूरत लाइव को जो गत रहेगाल में गजब लगता था। फिलहाल अब लाइव को मिलेंगे और नए साथी, क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप के जो फीफा वर्ल्ड कप मैस्कॉट है उनके बारे में मैं आपको बता दूं, मेपल द मूज, जायू द जगुआर एंड क्लच द बॉल ईगल। वेल, तीनों देशों ने अपने अलग अलग एक तरह से ये मैस्कॉट बनाए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट कंट्री कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए को। विल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें जहां सिर्फ एक लाइव मिला था, इस बार तीन होस्ट के चलते तीन नए मैस्कॉट जुड़ गए। वेल, लाइव से पहले ये नाम था जाबी वाका का, उसके पहले जब ब्राजील में वर्ल्ड कप हुआ था तो था फुलसो, एंड उसके पहले जाकुमी 2010 में साउथ अफ्रीका में जब वर्ल्ड कप हुआ। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड कप में हर बार एक मैस्कॉट होता है, लेकिन इस बार पहली बार तीन तीन मैस्कॉट मिले हैं, इसलिए लाइव के बाद से साथियों का सिलसिला बढ़ गया है और अब लाइव के तीन नए दोस्त भी हो जाएंगे। वेल, लाइव जो हमें वेलकम करता था और मैच के पहले एक रूम के अंदर जाकर हम सब बैठकर लाइव के बहुत सारे जबरदस्त एक्शन सीन्स देखते थे। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं, समय बीत जाता है लेकिन यादें हमेशा रह जाती, और लाइव वर्ल्ड कप 2022 की एक ऐसी खूबसूरत याद है जो कतर ने हमें दी और जिंदगी भर याद रहेगी। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ, मिर्ची थॉट।

0: में जी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

वैसे वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा, लेकिन फैंस के अंदर जो जुनून अभी से भर गया है। गौरव आपके साथ है, और इस बार वर्ल्ड कप में रूल्स थोड़े बदले होंगे, हमें उसे याद रखना है। जैसे गोलकीपर बॉल अपने हाथों में 8 सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि उसे बॉल मिली 8 सेकंड के अंदर उसे तुरंत थ्रो करना है। वेल इतने नहीं, 10 सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूशन रूल को मैंडेट कर दिया गया है, यानी कि एक प्लेयर के आने और दूसरे प्लेयर के जाने के बीच सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, टीम्स को थोड़ा जल्दी करना होगा। एक्सपेंडेड वीएआर पावर्स दिए जा रहे हैं इस बार मैच रेफरीज को, जो किसी भी सिचुएशन में इंटरवीन करेंगे, एंड वीएआर इनकरेक्ट कॉर्नर किक डिसीजंस के लिए लिया जाएगा, या फिर सेकंड येलो कार्ड इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है। फाउल्स जब सेट किए जाएंगे उससे पहले भी देखा जा सकता है, ऑफ बॉल इंसिडेंट्स पर भी इसका गोल और पेनल्टीज के लिए यूज किया जा सकता है। एंड अबाउट इंजरी, आई विल टेल यू समथिंग, अगर आप मैदान से बाहर जाकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं 60 सेकंड से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। गोलकीपर को ट्रीटमेंट फील्ड पर ही दिया जाएगा, और टीममेट्स कैन नॉट गैदर अराउंड द गोलकीपर, क्योंकि वहां पर टैक्टिकल डिस्कशन होते हैं जो कि अब बंद कर दिए जाएंगे। रेड कार्ड का ऑफेंस, यस, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं ऑफिशियल के अगेंस्ट तो आपको रेड कार्ड मिलेगा, और अगर आप अपने चेहरे को कवर कर कुछ एब्यूसिव या फिर डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो भी आपको रेड कार्ड दिया जाएगा। 5 सेकंड काउंटडाउन फॉर थ्रो इन्स एंड गोल किक्स, यहां भी एक नया ट्रीटमेंट जहां पर प्लेयर को बाहर से बॉल अंदर 5 सेकंड के अंदर फेंकनी है, और गोल किक भी 5 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। यानी कि फुटबॉल का गेम यू तो 90+ इंजरी टाइम का होता था, लेकिन अब इस गेम को और फास्ट बनाने के लिए ये और इंपॉर्टेंट रूल बनाए गए हैं, तो एक्शन ज्यादा होगा और ड्रामा कम हो जाएगा। आई एम श्योर नेमार जैसे लोग थोड़ा परेशान जरूर होंगे, या फिर रोनाल्डो भैया, हम तो मैसी फैन है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
4: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
3: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar.
6: Let's do the

नजर लगे ना लगे सर ऐसे मौसम में गर्म ना लग जाए मैनू बुखार ना चढ़ जाए तेनू यार भैया टेम्परेचर अब धीरे धीरे काफी हाई हो रहा है और सड़क पे रात में भी निकलो तो दोपहर वाली फीलिंग वाला वो जो टेम्परेचर का इफेक्ट है ना वो सड़कों पे गर्मा गर्म माहौल के साथ मिल रहा है। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कतर अपने सबसे हॉटेस्ट फेज में एंटर कर चुका है और लगभग 10 दिन और बचे हैं जब ये हॉटेस्ट फेज का स्टार बदलेगा। लेकिन गर्मी तो फिर भी रहेगी दोस्तों, पानी पीते रहना है, गर्मी को कोसते रहना है, कभी ना कभी सूरज चाची को उदय आएगी और फिर वो कहेंगे चलो मौसम बेहतर कर देते हैं, बहुत इन लोगों को तपा लिया। इसी उम्मीद में कि वो दिन जल्द आएगा जब मौसम ठीक ठाक हो जाएगा। मस्त बोलो गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से वीकेंड की वाइब सेट करेगा एंड आपसे और ढेर सारी बातें करेगा यही मिर्ची पर। तब तक के लिए हबीबी मस्त सलामा मिर्ची थॉट हरारा कतीर।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक फॉर द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं, हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल शाउट आउट्स एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। अदनान सामी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स, गाने का नाम है लिपस्टिक। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। दिस सुपर फन सॉन्ग बाय अदनान इज ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद दिलजीत दोसांझ द डीलर, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक, अदनान सामी का लिपस्टिक देन दिलजीत का डीलर, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: नंबर 10।

0: दिस सॉन्ग स्क्रीम्स दैट पंजाबी आ गए हैं। दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कंपोजिशन, गाने का नाम है डीलर। 11 हफ्तों से पंजाबी इस काउंटडाउन पे रेजिडेंट बन चुके हैं। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों के काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है। मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर आप लोग मुझसे गाने शेयर करने से ज्यादा आजकल गानों का नाम पूछते हो कि यार वो मैंने बाद में ट्यून किया था और ये वाला गाना कौन सा था। डोंट वरी, शो के बीच में हम आपके लिए पूरा काउंटडाउन वापस रीकैप करेंगे। अभी काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, दैट्स बाय मीका सिंह। नाम ऐसा है, सुन के आपको उनकी आवाज याद आ जाती है। आवाज ऐसी है कि एक वर्ड सुन के ही हमको पता चल जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट है। ही इज इनक्रेडिबली यूनिक दैट वे। चाहे उनके फिल्मों के गाने हो, नॉन फिल्म गाने हो, मीका सिंह इज अ कैरेक्टर in his own right. सोचने वाली बात है, all artists want that identification, right? कितनी बार होता है that हम कोई गाना चलाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि इसने गाया है, उसने गाया है, किसका गाना है, but with Mika Singh there's never a scope of any confusion. उनकी आवाज ही उनके गानों की टेकअवे फैक्टर है। पिछले हफ्ते मैंने आपको इस काउंटडाउन पे एक ऐसा गाना सुनाया था, आपको इंट्रो म्यूजिक सुन के बताना था ये कौन सा गाना है। कभी कभार वो इंट्रो म्यूजिक भी गाने का टेकअवे फैक्टर होता है। रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, एक बार फिर से सुनाती हूँ, बताओ ये कौन सा गाना है।

@RJ Kalik on Instagram पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है, नीका का गाना है, जल्दी आके बताओ म्यूजिक किसका है। Now back to the countdown, अगले वाला गाना इस दया द रैपर मीका सिंह का गाना, गाने का नाम है छोरी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। You're listening to Gaana ID Top 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sakka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
3: हेलो
4: हेलो नवनीत
3: या
4: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
3: हाय नवेद,
4: क्या हाल चाल है?
3: बढ़िया है।
4: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
3: हाँ, बन गया क्या
4: यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
3: हाँ?
4: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
3: या मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
4: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
3: मिस्टर दिलीप।
4: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
3: मैं क्या कुछ गलत
4: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
3: अब ऐसी बात क्या,
4: ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
3: अब मैं क्या
4: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
3: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
4: तुम मुझे ये बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
3: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
4: अरे तो
3: तरफ से मैं माफी मांग,
4: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
3: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
4: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
3: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
4: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
3: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
4: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
3: नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
4: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
3: कुकड़ुकू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 गानिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Is bandi ka naam hai RJ Kanega. Instagram par jaiye, mujhe follow karo. Follow karna bilkul free hai. Mera handle is @RJKanega. I truly believe that aap gaane share karte hai na, jisse bhi, jis dost se, wahan pyar padta hai. और हर हफ्ते आप सब इतने सारे गाने शेयर करते हो हमारे साथ। अश्काई और मैं आपके सारे सजेशंस को ध्यान से देखते हैं फॉर आवर सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ऑनेस्टली वी लव द क्लासिक इंडी पॉप एंड आपके सजेशंस, जिस तरह से, जिस एंथुजियाज्म से आप गाने शेयर करते हो, कहानियां बताते हो, इट जस्ट मेक्स अस फील सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि मैं पूरे शो में 2 बार ये करूं, पर इट्स नॉट पॉसिबल। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

thing. If you're from the 2000s ka generation, you know the impact of this song. Before Meeka Singh became voice of Hindi film songs ka anthem, jaise ki Mauja Hi Mauja, Subah Hone Na De from Desi Boys, Aankh Mare from Simba, matlab unki awaaz hum sunte hain aur wo party wali awaaz yaad aati hai. 440 volt from Sultan. Meeka Singh owns all these songs. ये गाने इतनी बड़ी फिल्मों के गाने हैं, बट इन हिज ओन राइट उनके नॉन फिल्म गाने लाइक समथिंग समथिंग का भी एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट पड़ा था उनके करियर पर, उनके ऑडियंसेस पर. ये गाना उनके इंडिपेंडेंट पॉप फेज का एक मेजर पार्ट रह चुका है और उनके एल्बम का टाइटल ट्रैक भी था. गाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी है ही नहीं. द सॉन्ग इंट्रोड्यूसेस मीका सिंह एज अ कैरेक्टर टू अस. एक चीकी फ्लर्टेशन है, थोड़ी पंजाबी पॉप वाली एनर्जी भी है, एंड द हुक ऑफ द सॉन्ग जो पहली बार सुनते ही आपके दिमाग में घर कर लेता है. आई मीन इट. आई चैलेंज यू, ये गाना सुनने के बाद आप इसको हम नहीं करेंगे. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. द बिगेस्ट पार्टी वॉइस ऑफ आर जेनरेशन मीका की आवाज में. दिस इज समथिंग समथिंग, अ 2006 इंडी पॉप सॉन्ग प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है आरजे करेगा. एंजॉय.

0: गॉड मीका सिंह, योर वॉइस हैज गॉट दैट मिस्चीवियस चार्म, मतलब ऐसा लगता है कुछ छुपा रहा है, कुछ मतलब नहीं नहीं है, मैं नहीं ट्रस्ट कर रही हूँ इस पे, दैट्स द वाइब ही गिव्स मीका सिंह की आवाज में. दिस वाज समथिंग समथिंग ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड अपने सजेशंस बिंदास दो. ये मत सोचो कि ये गाना थोड़ी ना ये लोग चलाएंगे. रोहन फ्रॉम बैंगलोर ने हमको समथिंग समथिंग रेकमेंड किया था एंड हिज स्टोरी बिहाइंड इट जस्ट मेड अस लाफ सो मच दैट वी हाईली रेजोनेट विद हिम. 90s 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप गाना विच यू स्टिल थिंक इज एन एब्सोल्यूट बैंगर, हमसे आगे शेयर करो एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ. हिमेश रेशमिया की आवाज में रजत नागपाल राणा सोते का गाना, गाने का नाम है शराब. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके शराब इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Blana Indie Top 10.
1: Kanika ke saath on Mirchi.
0: It's hot.
2: Mirchi stories.
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
4: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी.
5: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई. और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया.
0: मिर्ची, इट्स हॉट.
6: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू.
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा.
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM Mirchi 1. It's hot.
0: Ghana Indie Top 10.
1: Kanika ke saath on Mirchi.
13: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mere saath connect karo. Mera handle is @RJKanika. Aksar jab hum baithte hain, music, movies ke baare mein baat karte hain, har generation ke kuch aise guards hote hain, moral guard bolte hain unko, jo ye baatein shuru kar dete hain ki yaar aaj ke music mein wo baat nahi hai. आज की फिल्मों में वो बात नहीं है. 10 साल पहले भी लोग बोल रहे थे कि तब के गानों में बात नहीं थी. अर्ली 2000s में जब बॉम्बे वाइकिंग अपना पॉप फ्यूजन ला रहे थे, तब 2000s वाले लोग बोल रहे थे कि आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है. तो एक बात तो क्लियर है, लोगों का काम है कंप्लेन करना और वो कंप्लेन करते रहेंगे. व्हाट वी कैन डू थ्रू दिस शो इज आपको हर तरह के इंडिपेंडेंट म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराना. मे बी रोमांस, सैपी, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स आर नॉट फॉर यू, तो थोड़ा सिंथ पॉप, जैज पॉप आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे. मे बी अ फोक पॉप फ्यूजन इज समथिंग दैट यू लाइक. मैं ऐसे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी तो आपको लगेगा पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन गाने का म्यूजिक जब कनेक्ट करता है ना, तो बस देयर इज नो रीजन व्हाई वी लाइक अ सॉन्ग. आज मैं आपको एक ऐसे गाने से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिसका बेस तो फोक म्यूजिक है, बट फोक म्यूजिक के ऊपर पैकेजिंग सुपर मॉडर्न प्रोडक्शन की है. इट्स कॉल्ड उड़ी उड़ी बाय निशान सरकार. We'll play the whole song for you, लेकिन गाने के कुछ सेकंड सुन के ही समझ में आ जाता है कि ये गाना बहुत फेमिलियर भी लगता है पर नया भी लगता है. एक तरफ राजस्थानी फोक की वो लाइन, बिलोड़ी चुनरिया यूं ही उड़ी उड़ी जाए, दूसरी तरफ द बेस लाइन, द ग्रूव, जो यू नो इट्स सो कूल, इट्स सो रेलेवेंट, इट्स सो न्यू. What I absolutely love about this song and the producers of this song is कि उन्होंने folk music को कि यार ये तो उस जमाने का music है, आज के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, हम इसको म्यूजियम में छुपा कर रखते हैं, ऐसी कोई कोशिश नहीं करी है. उन्होंने उससे ही आज की language में बात करके दिखाई. गाना बहुत energetic है लेकिन over the top नहीं है. It's extremely danceable, groovable, लेकिन dance के लिए नहीं बना है. And chorus में एक ऐसी quality है that एक दो बार सुनो फिर पूरे दिन दिमाग में घूमता रहता है. And that's what makes independent Indian pop music so exciting. हमारा एज ओल्ड राजस्थानी फोक एंड ऊबर कूल प्रोडक्शन के साथ अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय निश एंड सरकार. आई एम श्योर यू विल लाइक दिस सॉन्ग. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

इस गाने को एक बार सुन के काम ही नहीं चलता है। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार, याद रख लो। वापस सुनना है तो गाना ऐप पर जाके जल्दी सुनना। @RJ करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। ऐसा कोई गाना है विच यू थिंक दैट आई लाइक इट, आई एम श्योर औरों को भी अच्छा लगेगा, हमसे आके शेयर करो एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। उसके बाद करण औजला इक्की का गाना, गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फ्रॉम पी पॉप कल्चर। पूरे 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Indie Top 10.
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
5: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच. मराठी गाना था वो. टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी. इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरीचा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा.
4: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर. मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोर्डल.
0: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोर्डल.
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ये गाना हर उस आर्टिस्ट के अंदर की आवाज को कैप्चर करता है जिसको लगता है कि क्या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है, बट नहीं, एवरी आर्टिस्ट हु इज ऑन अ जर्नी टू क्रिएशन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट करते हैं। अनूप जैन ने उस फीलिंग को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है इन दिस सॉन्ग जिसका नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: मिर्ची पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अपना रिपोर्ट कार्ड किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा मजा आता है देखने में कि कौन सा गाना हुआ आउट, कौन सा गाना हुआ 2 पोजीशन नीचे। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। अदनान सामी की आवाज में लिपस्टिक वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
0: उसके बाद दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन नंबर 9।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबी ना।
0: मीका सिंह द अदर रैपर का चोरी ऑन गाना नंबर 8।
4: चोरी करती जंपर चोरे ने दे दिया बम्पर।
0: आदित्य रिखारी रैवट और कुटलेखा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 7। फिर गाना नंबर 6 पर वो मिट्टा रोर का शीशा।
5: तेरे आगे पीछे लंके सुन दोना छोरी का हर।
0: मेश रेशमिया इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड शराब दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा वॉज ऑन गाना नंबर 4। करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3। अनूप जैन की आवाज में हमने सुना अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
6: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
0: And the numero uno song of the week is yet again Baron by Banjare. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप मार लिया है बैरन ने। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। This हरियाणवी song is changing how music works, how it's blurring the boundaries between language and genres. Baron is playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.
1: Number 1.

0: ट्वेंटी टॉप टेन कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन,
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: अरे यार मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ, कॉलेज में कैसे जाऊँ?
2: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना।
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: आज हम हिंदी फिल्मों के ऐसे वर्सेटाइल विलन की बात करने वाले हैं जो आई एम श्योर सबको बहुत पसंद रहे हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिल्मों में तो ये लोगों को यूं यूं यूं करके मार देते थे और नाम था इनका जीवन। असली नाम वैसे ओमकार नाथ धर था लेकिन फिल्मों के लिए नाम जीवन रख लिया। ये वही जीवन है जो अपनी डायलॉग डिलीवरी, अपने मैनरिज्म्स और खास करके पौराणिक कथाओं वाली फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाने के लिए जाने जाते।
1: नमस्कार, नारायण नारायण।
0: करते हैं इनके बारे में कुछ और बातें और इनकी कही बातें सुनेंगे भी पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सुनील जी।
3: हाँ जी
4: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर। कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं।
3: किस चीज के जी सर?
4: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
3: वेरी गुड यार।
4: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
3: ठीक है। अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
4: हाँ जी।
3: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
4: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
3: कंडीशन वगैरह?
4: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
3: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक, कोई आदमी थोड़ा प्राइस समझ के कहते हैं ना अपने को ज्यादा।
4: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
3: क्या?
4: पुराना लाइए नया ले जाइए।
3: क्या भैया पुराना क्या लाऊं भाई?
4: पुराना पेट्रोल लाओ नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला है।
3: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
4: सर पुराना जो आपने
3: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो तो
4: सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
3: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
4: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है। वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
3: पेट्रोल मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है।
4: अरे अरे तो ये क्या
3: पुराना कहाँ से लाऊं?
4: पुराना आपको लाना पड़ेगा, ये भी मैं पुराना भी। वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए बढ़ गए, हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना। यार कमाल कर रहे हैं आप।
3: पेट्रोल फालतू का। अच्छा। पुराना
4: लाओ,
3: नया ले जाओ, ये ले जाओ।
4: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है। सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
1: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ये जीवन कितना पुराना है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ और हम बात कर रहे हैं एक्टर जीवन की।
0: और एक पुराने इंटरव्यू में, मतलब लेट 70s या अर्ली 80s का ये इंटरव्यू होगा, जिसमें इंटरव्यू की होस्ट तबस्सुम जी ने उनसे पूछा था कि भाई आप कौन से पौराणिक टाइम से फिल्मों में काम कर रहे हैं।
2: मैं एक आप बीती सुनाता हूँ। मैं लंदन से बॉम्बे आ रहा था, थोड़ा के बाद मैंने देखा कि एक 8-9 साल का लड़का, वो एक उम्र रसीदा जेंटलमैन को घसीटता हुआ मेरी तरफ ला रहा है। तो मैं जरा चौकन्ना होकर बैठ गया। वो जेंटलमैन ने आकर कहा कि जीवन लाल, ये मारो ग्रैंडसन से हरसुख, एने पास एक चौपड़ी छे। मैंने ऑटोग्राफ कर दिया। तो हरसुख ने वो चौपड़ी वापस लेते हुए कहा, जीवन अंकल 2 दिन हो गया, हम तुम्हारा पिक्चर वीडियो पर देखा, अमर अकबर अंथनी। हाँ जेंटलमैन फरमाए, अरे तू 2 दिन, हम तो जीवन का पिक्चर साल 1935 में 1935 में देखा था, जब तू का तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ।
1: जी 1935 में उनकी पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था फैशनेबल इंडिया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची 1। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ऐसा ही शायद सोचते थे एक्टर जीवन, क्योंकि जब वो 18 साल के थे, उनके कॉलेज की छुट्टियां वगैरह चल रही थी, तो वो अपने घर से भाग गए थे बॉम्बे फिल्मों में काम करने के लिए। अच्छा, 1981 की एक फिल्म थी बुलंदी, जिसमें जीवन एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर में ही होते हैं, एक फादर प्ले करते हैं, और उनके बेटे जब उनसे आगे पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, तो ये जीवन जी क्या जवाब देते हैं, सुनिए।
1: बेटा पवन, मेरे इरादों पर चूना लगाने की कोशिश मत करो, याद रखो ज्यादा इल्म इंसान को बुजदिल बना देता है, उसे हर काम बुरा और गलत दिखता है, उसका जमीर दस्तक देता है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, और सारी जिंदगी उसकी कानून से डरते डरते गुजरती है, वो कौड़ी काम का नहीं रहता। अरे मेरी तरफ देखो, मैं बिना पढ़े लिखे कितने मजे में हूँ, कितना रुपया कमाया मैंने, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं, आराम से,
0: बड़े आराम से, इतने एफर्टलेसली ये कितने अलग अलग तरह के रोल निभा लेते थे भाई, क्या टैलेंट था है। इनके बारे में कुछ और बातें करेंगे, इनकी कही हुई बातें एक पुराने इंटरव्यू में वो भी सुनेंगे, राइट हियर पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा, आहा। और

0: पुरानी जीन्स पर आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल विलन्स जीवन की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई दूसरे किरदारों की गजब बेइज्जती तो वो ऐसे करते थे कि मजा आ जाता था।
1: अरे घन चक्कर,
0: कुछ डायलॉग सुनिए उनके जरा।
1: अबे ओ गधे की औलाद, तेरे बाप ने भी कभी तीर चलाया था? छोड़ दे ये तीर कमान, ये राजाओं महाराजाओं के खिलवाड़ हैं। जा जा जा जा, घटिया काम कर घटिया।
0: जा घटिया काम कर। अच्छा ये वाला सुनिए।
2: हराम खोर, तेल मालिश कर रहे हैं, बूट पालिश, हाथों में ताकत ही नहीं है।
0: वेल इनके कुछ और डायलॉग्स भी और एक पुराने इंटरव्यू में इनकी कही कुछ बातें भी सुनेंगे थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
2: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: रात के बज चुके हैं 10, मिर्ची पे शो का नाम पुरानी

0: फिल्मों में ये लोगों को बड़ी बेदर्दी से मार देते थे और नाम था इनका जीवन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वही जीवन जो जाने जाते थे अपनी डायलॉग डिलीवरी, अपने मैनरिज्म्स और अपने फेमस किरदार नारायण नारायण नारद मुनि के लिए। एक बार एक लेट 70s या अर्ली 80s का इंटरव्यू होगा, उसमें उनसे पूछा गया था कि ये रिकॉर्ड बनाने वाला किरदार इन्होंने कितनी दफा निभाया है।
1: 49 times। अब ये रिकॉर्ड बने या टूटे या रहे, इसकी तो खैर मैंने कभी परवाह नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में इन फिल्मों में मैंने महामुनि की पब्लिसिटी बहुत कर दी है, उनको जरा मुश्किल में भी डाल दी। मराठी पेपर एक मेरे पास लोकसत्ता, उसमें महाशय ने लिखा है कि अगर आकाश से असली नारद उतर कर पृथ्वी पर आ जाएं और वो जीवन जी की तरह नारायण नारायण नारायण ना बोले तो हम समझेंगे कि नारद नहीं है, वो बहुरूपिया है और नारद बनकर हमारे सामने आ गया है।
0: एक्चुअली जब हम नारद मुनि सोचते हैं तो जीवन जी ही जहन में आते हैं। वैसे इस इंटरव्यू के बाद भी उन्होंने ये किरदार निभाया था तो टोटल नंबर कुछ 61 हो गया था। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
2: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड विलन्स जीवन मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनका रियल नेम ओमकार नाथ धर। 1915 में जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ और जब ये 18 साल के थे ना, जब कॉलेज में थे तो जेब में 26 रुपए लेकर भागकर बॉम्बे आ गए फिल्मों में काम करने के लिए। 1935 की फैशनेबल इंडिया नाम की एक फिल्म से इनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। बहुत सारे मेमोरेबल रोल्स इन्होंने निभाए 1986 तक, जिनमें से ऑफकोर्स सबसे पॉपुलर था पौराणिक कथाओं वाली फिल्मों में नारायण नारायण नारद मुनि का किरदार, और इनको इनकी डायलॉग डिलीवरी, इनके मैनरिज्म्स के लिए भी जाना जाता था। अच्छा, मुझे जो इनका किरदार बहुत पसंद है ना, वो है अमर अकबर एंथनी का रॉबर्ट। अलग ही स्वैग और स्टाइल था बंदे में। इनके उस रॉबर्ट किरदार के एक दो डायलॉग सुनते हैं।
1: I'm sorry, whisky में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, हम इसमें आइस डालना भूल गया था, बेकार बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है।
2: You bloody fool! रॉबर्ट को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी गोलियों से खेलना पड़ा।
0: कुछ और डायलॉग्स, कुछ और बातें, इनफैक्ट एक पुराने इंटरव्यू से जीवन साहब की बातें सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी
0: जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: क्या स्टाइल, क्या डायलॉग डिलीवरी, क्या मैनरिज्म्स। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और हम याद कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट विलन्स ऑफ हिंदी सिनेमा जीवन साहब को। उनके कुछ डायलॉग सुनते हैं, देखे धमकियाँ कैसे प्यार से देते थे।
1: इसी अंधेरे में रहने की कोशिश करो, रोशनी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
0: और घर के गहने वहने सोना तो यूं ही बेच के आ जाते थे।
1: मौसी बहुत अच्छे दाम मिल गए हैं, ये देखो रेखा की कीमत।
0: अपने किरदारों के जरिए काफी अच्छे लाइफ लेसन भी देते थे।
2: वादा पर खुरदार वादे का एतबार समझदार नहीं किया करते।
0: समझे, समझदार बनो, किसी के वादे का एतबार मत करो। बट यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जीवन साहब के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे यहीं पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: भूल गए
1: जानी मेरा नाम
0: अच्छा
1: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडलबाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
4: ऑफ कोर्स, कस्तु मजा, परिणीता से, और शिलीगुड़ में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
3: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Purani Jeans with Charu, only on

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: हिंदी फिल्मों के बेहतरीन विलन्स या कैरेक्टर आर्टिस्ट में से एक जीवन साहब, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनका स्टाइल, उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी एंड खास करके उनके मैनरिज्म्स। एक बार एक बहुत पुराने इंटरव्यू में, लेट 70s या अर्ली 80s का इंटरव्यू होगा, उन्होंने अपने मैनरिज्म्स के बारे में क्या शेयर किया था, सुनिए।
1: ऐसा है ना कि मैनरिज्म का मतलब है कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा एक्शन या कोई इस तरह की अल्फाजों की बंदिश जो पब्लिक को पसंद आ जाए। तो अगर वो पसंद कर ले पब्लिक, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, उसे बार बार एक दो चार फिल्मों में और रिपीट किया जाए। हाँ, स्वामी से लेकर कोहिनूर फिल्म तक मेरा मैनरिज्म क्या था, कोहिनूर से लेकर शरीफ बदमाश तक। मैनरिज्म था, और फिर शरीफ बदमाश से लेकर अभी तक।
0: ब्रिलियंट। और उनके इन मैनरिज्म्स को हिंदी फिल्मों के आजकल के जो एक एक्टर हैं, उन्होंने भी काफी कॉमेडी सीन्स में इनको मिमिक किया है। कौन है वो, पता करते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर, मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। 89.6 मिर्ची।

0: एक सक्सेसफुल एक्टर होने की एक निशानी ये भी है जब लोग आपको मिमिक करें। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर वो एक्टर कितना सक्सेसफुल, पॉपुलर, टैलेंटेड होगा जिसकी मिमिक्री खुद आज के एक्टर्स करते हैं। मैं बात कर रही हूँ जीवन साहब की, जिनके न्यूएंसेस, डायलॉग डिलीवरी, स्टाइल इस कदर पॉपुलर था कि उसको आजकल के एक सुपरस्टार ने भी अपनी कॉमेडी सीन्स में उनको मिमिक किया है। अच्छा, जीवन साहब का एक ये छोटा सा डायलॉग सुनते हैं।
1: आज हम अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेंगे।
0: और अब सुनिए अक्षय कुमार की हे बेबी मूवी का ये डायलॉग।
2: राम खोर तुम्हारे साथ कौन करना चाहता है? हम इस खातून के साथ करना चाहते हैं और साथ में एक रेडीमेड बच्चा भी मिलेगा।
0: वेल, कुडोस टू जीवन साहब और उनका अलग अंदाज। उनकी कुछ और बातें करेंगे राइट हियर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: इज दैट संजीव?
3: या आई एम स्पीकिंग।
4: हाय संजीव, आई एम अतुल कॉलिंग फ्रॉम।
3: Okay.
4: संजीव, आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए। ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है। तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
3: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज।
4: ओके,
3: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है।
4: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
3: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव।
5: 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव।
3: सॉरी सर,
4: कैरी ऑन रखिए, आप बताइए मुझे अपने बारे में। ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ। हाँ बताइए। भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
3: कस्टमर्स आए, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड।
5: बकवास बनकर कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर,
3: हम करते थे सेटिस्फाइड
5: कर। बकवास बनकर
3: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग।
4: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
3: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने।
5: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंस चेक नहीं कर रहा। अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार।
3: अभी तक
5: पेशेंस चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है। मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा, मोबाइल पकड़ा कभी हाथ में?
3: बोल
5: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा। कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है।
3: खुद को देखा आपने कभी?
4: संजीव, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है, मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड, तुम्हें जॉब मैं दूंगा। तुम मेरे शो में आके बैठो, मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: जीवन साहब की बातें हो रही हैं आज पुरानी जीन्स पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1935 से 1986 तक की उनकी फिल्मी जर्नी में उन्होंने अलग अलग फिल्मों थिएटर को मिला के 61 टाइम्स नारायण नारायण नारद मुनि का किरदार निभाया था। सबसे पहले उन्होंने ये किरदार 1947 की भक्त ध्रुव नाम की मूवी में प्ले किया था। फिर ये पॉपुलर हुआ 1950 की हर हर महादेव फिल्म से, और आखिरी बार ये किरदार उन्होंने 1979 की गोपाल कृष्ण नाम की मूवी में निभाया। जीवन जी द्वारा निभाया गया ये नारद मुनि का किरदार इतना पॉपुलर था कि एक बार एक न्यूज़पेपर ने क्या आर्टिकल छापा था, जीवन जी ने अपने पुराने इंटरव्यू में इस बारे में शेयर किया था, सुनिए।
1: मराठी पेपर एक मेरे पास लोक सत्ता, उसमें महाशय ने लिखा है कि अगर आकाश से असली नारद उतर कर पृथ्वी पर आ जाएं और वो जीवन जी की तरह नारायण नारायण नारायण ना बोले तो हम समझेंगे कि नारद नहीं है, वो बहुरूपिया है और नारद बनकर हमारे सामने आ गया है।
0: क्या ही बात है भाई, क्या बात है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: भाई हिंदी फिल्मों के विलन्स को एक अलग ही तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब इतना नहीं करना पड़ता, पहले करना पड़ता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो ये कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी लोग उनसे नफरत करते थे, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उनको नापसंद करते थे या देखकर डर जाते थे। एक बार एक बहुत पुराने इंटरव्यू में जब जीवन साहब से पूछा गया कि ये विलन वाले रोल करने के बाद उनकी जाती जिंदगी में क्या असर पड़ा है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: हाँ, जाती जिंदगी बड़ी पुरसकून हो गई है, बड़ी अच्छी हो गई, बड़ी उम्दा हो गई है, क्योंकि स्टूडियो में विलन बन के अपनी बहन की चूड़ियां लेके गिरवी रख देना, उसकी शराब पी लेना, अपने बूढ़े बाप को धक्के मार के निकाल देना, बड़ी बहन को जो अंधी बेचारी होगी उसे सीढ़ी से धक्का दे देना, गली में सब इधर उधर नजरबाजी करना, किसी को रिवॉल्वर मारना, किसी को थप्पड़ खाना, जब इतनी बुराइयां दिन भर में कर ली जाती हैं तो नतीजा घर आके बच्चों और बीवी का खिलता मुंह देखकर सुकून हो जाता है।
0: वैसे जीवन साहब की वाइफ का नाम किरण था और इन्होंने अपने घर का नाम जीवन किरण रखा था। हाउ स्वीट। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची। hey!

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है, और वो कौन है? शाहिद कपूर। बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
4: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क विश्क ऑब्वियसली। द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन।
3: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स जीवन साहब की आज बातें हो रही थी शो पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और जीवन साहब ये जो रोल निभाते थे ना, जिसमें वो विलन भी होते थे कॉमेडियन भी होते थे, ऐसे रोल्स के बारे में एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
0: जीवन साहब का जन्म कश्मीर में हुआ था। एक बार उनसे पूछा गया था कि अगर वो एक्टर नहीं होते, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होते तो क्या कर रहे होते, सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है,
0: क्या बोलते हैं। इसी के साथ मेरे यानी की की तरफ से है बाय, हेलो हाय, फिर यही होगी पुरानी जीन्स पर, मिर्ची पर।
2: वेट वेट वेट, यू सी द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम इज जक्सटापोजिशन बाय द हीमोग्लोबिन इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज यू आर अ सोफिस्टिकेटेड रिटोरिशन इंटॉक्सिकेटेड बाय द एक्सुबरेंस ऑफ योर ओन वबासाटे।
3: My name is Anthony Gonsalves.
4: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

生长讲道。

ना कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है,

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।